नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, कैसे हैं आप सब? हाँ भाई, देखिए, जिंदगी तो ले आई आपके लिए एक नई सुबह, एक नया ख्याल, एक नया मौका, लेकिन आप इस मौके को जीने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप आज जिंदगी के साथ मुस्कुराने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि ये जिंदगी तो आपके लिए मुस्कुरा रही है, एंड आई होप कि आप भी बिल्कुल रेडी होंगे आज के सपनों को, आज के अरमानों को, आज के वक्त को जीने के लिए। तो फिर चलिए, देर किस बात की है। मैं सताक्षी हूं ना आपके साथ, और मेरे साथ है बॉलीवुड के कई ऐसे गाने जो इस वक्त को खास बना देंगे, आपकी मॉर्निंग को आपके लिए खास बना देंगे। और शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। Keep listening to Radio Brismani 1701 AM, सताक्षी के साथ सुनते रहिए ठापंस।

मैम गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपको उन सबको जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इट हैपेंस आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में ये वक्त है उन्हें विश करने का जिनके लिए आज बहुत ही खास दिन है और बहुत सारी विशेज उनको आ रही हैं। जी हाँ, जिनका आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उन सबको, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, हम विश करते हैं कि ये दिन जो है आपकी जिंदगी का बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल दिन रहे और आपको ढेर सारी विशेज, ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारी दुआएं मिले। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और बस यार, मतलब आपके लिए सिर्फ एक ही दुआ निकलती है कि आज के टाइम में तो बहुत जिंदगी भर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ बना रहे, वो प्यार, वो मोहब्बत बनी रहे, इससे बड़ी कोई और विश नहीं हो सकती है ना। तो ये प्यार यूं ही बना रहे, रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी की आपके लिए यही विशेज हैं। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे है उनसे कहेंगे कि भाई हमारे स्टूडियो में हमारे लिए भी केक भेज दीजिएगा, है ना, हम भी आपकी पार्टी का हिस्सा है, सो ट्रीट हमारी भी बनती है। इसी बात पर एक और ट्रैक आपके नाम। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। कभी कभी खुद से एक बात पूछने की या खुद से बात करने की बहुत जरूरत होती है। देखा जाए बेसिकली तो हम सब दिन भर किसी ना किसी दौड़ में लगे रहते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन रात होते होते हम थक कर चुपचाप सो जाते हैं और फिर अगला दिन उसी रफ्तार से शुरू हो जाता है। पर इसी तेज रफ्तार में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं दोस्तों, और यही आता है रिफ्लेक्शन, यानी कि सोचने का वक्त, खुद के बारे में सोचना। जब हम एक छोटा सा ठहराव, एक छोटा सा पॉज अपनी लाइफ में फील करते हैं ना, तब हम वहां पर खुद से बात करते हैं, खुद को समझते हैं। ये कोई एक दूसरे के साथ, यानी कि आपसे और आपके मन से आपका कोई आर्गुमेंट नहीं है, बल्कि ये बात जो है ये दिल से दिल तक की होती है, आपको अपने ही मन को समझने की होती है। और

प्रिस्वानी 1701 AM पर दोस्तों आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस। जी हाँ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। साइलेंस, ये वर्ड सुनते ही हमारे मन में अक्सर एक ऐसा थॉट आता है जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, है ना, या फिर ये बात आती है कि यार एक शांत कमरा हो जहाँ पर हम अकेले बैठे हो, और या फिर जंगल की खामोशी हो, मतलब कोई भी दूर दूर तक नजर ना आए जिससे हम बात कर सकें, तभी तो हम शांत रह सकते हैं, वरना तो हम बात ही करते रहेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शांत होना या मौन होना सिर्फ बाहरी आवाजों का रुक जाना नहीं है कि आपको कोई आवाज ना आए, है ना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप एक ऐसे दरवाजे के अंदर खुद को पाते हैं जहां बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, और आपके अंदर का दरवाजा, आपके मन के अंदर का दरवाजा जो है वो खुल जाता है। ये वो जगह है जहां आप हजारों थॉट्स के बीच खुद को पाते हैं। आपका दिल क्या चाहता है, आपके मन में कौन कौन सी यादें आ रही हैं, कौन कौन से मोमेंट्स आपको याद आ रहे हैं, आप इन सारे थॉट्स के बीच खुद को पाते हैं। यू नो, जब भी आप फोन पर होते हैं, आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो बेसिकली ये सारे थॉट्स जो हैं, या आप लोगों से जब बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे थॉट्स आप दबा कर रखते हैं अपने मन में। लेकिन जब आप साइलेंस में बैठते हैं तो आप अपने मन के थॉट्स से, अपने मन के विचारों से आप भागते नहीं हैं, बल्कि उनके सामने बैठकर आप उन्हें सुनते हैं। तो बेसिकली साइलेंस का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, खामोश हो जाना नहीं है, साइलेंस का मतलब है खुद के साथ बातचीत करना, खुद को वक्त देना, खुद को समझना। तो जरूर खुद के साथ आपका जो साइलेंस का प्रोसेस है या जो खुद के साथ आपकी बातचीत है, उस पर ध्यान जरूर दीजिए, और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। एक और ट्रैक के साथ अभी हम और आप भी आगे बढ़ते हैं, एंजॉय कीजिए इस दिन।

गानों की हैट्रिक रितु प्रस्वानी पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गानों की हैट्रिक में, ये आज का लास्ट ट्रैक। और अभी इट हैपेंस में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको सुनवाए जाएंगे, सो कीप लिसनिंग टू रितु प्रस्वानी, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। बात करते हैं गुड हैबिट्स की, यानी अच्छी आदतों की। हाँ, और जब अच्छी आदतों की बात आती है तो आप कहते हैं सताक्षी ये बच्चों वाली चीजें तुम हमें क्यों बता रही हो, मतलब अच्छी आदतें तो हम बच्चों को सिखाते हैं, भला हम क्यों सीखें। तो देखिए जनाब, आप भी बच्चों से कम नहीं है, क्योंकि सारी बुरी आदतें तो आप में ही है। टाइम पर ना उठना, ढेर सारी चाय और कॉफी पीना, एक्सरसाइज ना करना, देर तक सोते रहना, कुछ भी अनशन खा लेना, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी बैड हैबिट्स ही कहलाती हैं, बुरी आदतें। और बहुत जरूरी है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक बढ़िया जिंदगी चाहते हैं, तो अच्छी आदतों को डालें। हाँ, तो मैंने आपकी सारी बुरी आदतें तो गिनवा दी, अब अच्छी आदतें क्या होती हैं आपको बेटर पता है। तो चलिए अच्छी आदतों के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश ओलक दिनाल से बने हुए हो। हुण गल करदे आ, सब तो पहला केड़ी फिल्म दा नाम आंदा है सुनील शेट्टी दी। जदों जदों सुनील शेट्टी दा जिक्र होगा ना, उदों 90s दी एक फिल्म दा जरूर नाम आऊगा। जी जी जी, 90s दी मोस्ट पॉपुलर फिल्मां दी गल आउंदी हैगी आ तां नाम मोहरा दा ही हुंदा है ना, सुनील शेट्टी दी है। सुनील शेट्टी ने विशाल दा रोल कीता सी ते जो इंसाफ पाउण दे लई किसी भी हद तक जा सकता है। यह फिल्म 1994 दी दूसरी सब तो वड्डी हिट सी। इस दी कमाई ने ट्रेड पंडिता नूं भी हैरान कर दिता सी। फिल्म दे गाने ते सुनील अक्षय दी जोड़ी ने अजिहा जादू कीता कि ए मेकर्स दे लई ना पैसे छापण वाली मशीन साबित हुई सी।

0: हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.9 FM ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल सुपने हुए। कुछ को गाने अजे हुंदे है गिने ना कि ओ भी सदा बहार रह जांदे ने। ते एक गाना हैगा है धड़कन धड़कन, बहुत ही सोहना गाना हैगा है, बहुत ही ज्यादा सोहना। ते गल भी इत्थे फिल्म धड़कन दी हो रही है, 2000 दे विच आई सी, साल 2000 दे विच ये फिल्म ना, सुनील शेट्टी दी फिल्म। सुनील शेट्टी सिर्फ एक्शन तक ही सीमित नहीं सी, धड़कन ने साबित कर दिता सी। उन्होंने देव दे नेगेटिव पर इमोशनल रोल दे लई फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड हासिल किया सी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया सी, जिस नाल सुनील दी जो बहुत सारे अलग अलग किरदार कर सकते ने सुनील शेट्टी, ये साबित कर दिता सी, क्योंकि नैगेटिव रोल दे विच भी वह बहुत ही ज्यादा फब्बे सी। नैगेटिव नहीं, ग्रे शेड कह सकते हैं। बाकी थानू की लगता है, तुसी दसो।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है.
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
2: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
3: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
6: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा अपना हरभजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वंजर वाले हम ते जी आप चे संदेश शौलक दिनाल से बने हुए हैं। एक डबल रोल वाली फिल्म भी आई सी गी सुनील शेट्टी दे बहुत सोहनी सी 1994 दे आई सी नाम से जी गोपी किशन मेरे दो दो बाप ये डायलॉग आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने डबल रोल निभाया सी जिस विच उन्हां दा कॉमेडी टाइमिंग दिखाई गई सी। ये फिल्म सरप्राइज हिट रही है ते सुनील शेट्टी दा स्टारडम ते होर ज्यादा वधिया सीगा। गोपी किशन फिल्म इन्नी ज्यादा शानदार सी ना इन्नी ज्यादा शानदार कि अज भी तुसी उसनु देखन बैठोगे ना तो आई एम श्योर तुसी जरूर कहोगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है कि है ते जे तुसी देख ली है कि है तो तुसी मेनू मैसेज करके जरूर दसो।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, वीरे। अतुल भारद्वाज जी नू अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी इंट्री केसेस नू हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main haan tuhanu Pradhat Pajit. Ek baar phir सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
4: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन डिस्टेंस
5: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
3: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन
5: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

0: मानो।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420933171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।

0: वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ, फ्राइडे आ गया है, मस्ती आ गई है, झूमने का वक्त आ गया है, रेस्ट करने का वक्त आ गया है, मजे करने का वक्त आ गया है, ये सारी चीजें करने का वक्त आ गया है। और अगर आप लोग अभी भी वो वीक डेज की जद्दोजहद में लगे हो तो थोड़ा उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि फ्राइडे आ गया है भाई। और फ्राइडे किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। बाकी फेस्टिवल आपको साल में सिर्फ एक दिन आकर खुशियां देते, फ्राइडे आपको हर वीकेंड में आकर खुशी देता है। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स जो आपको ज्यादा मिलता है उसकी कदर आपको ज्यादा होनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। इसी के साथ यहाँ पर आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक हेल्दी रिचुअल के साथ, एंड इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट वी डू विच हेल्प्स अस अच्छे से इसे प्रोसेस करने में, ये जो दुनिया की जद्दोजहद है इसे प्रोसेस करने में और इस केओस को अपने अंदर ना आने देने में। जी हाँ, प्रोडक्टिव बनने में और हेल्दी रहने में फिजिकली एंड मेंटली, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज हमें। तो आइए सबसे पहले वही करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही हम वो करते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम मज़ेदार रहे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आइए बिना देर किए करते हैं शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ, क्योंकि फ्राइडे आ गया है तो फ्राइडे वाला गाना भी आना चाहिए। और अगर फ्राइडे वाला गाना आना चाहिए तो हम कैसे उसे पूरा नहीं करेंगे आपके लिए। जी हाँ, तो सुनते हैं दिलदारा फ्रॉम द मूवी रा 1 आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और प्रोग्राम की शुरुआत के साथ अब जरा मौसम की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आज तो है फ्राइडे और अगले 2 दिन होगी छुट्टी, और 2 दिन की छुट्टी मतलब बाहर आना जाना, मस्ती मजा, ट्रिप, ड्राइव, कितना कुछ होता है करने के लिए, राइट? और बाहर निकलने का मन करता है, सुकून में बाहर निकलने का मन करता है, जद्दोजहद में बाहर जब हम निकलते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, वो वाला नहीं, बल्कि सुकून में, मजे करने के लिए, फन करने के लिए। सो ये सारी चीजें आप आउटडोर कितना कर पाएंगे, आइए हम वही आपको बताने वाले हैं। सो सबसे पहले 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज का है, अभी की बात की जाए तो 24.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है और फील आपको हो रहा है 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो है दिन के टेम्परेचर का हाल। रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में, और जैसे मैंने कहा था कि सूरज खिलखिलाता हुआ आपको नजर आएगा, बारिश नहीं होगी, वैसा ही हुआ, एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। और ये तो था आज के मौसम का हाल। अब जरा सैटरडे और संडे की बात कर लें, क्योंकि वीकेंड है भाई, और वीकेंड का ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौसम जानना, क्योंकि उसी हिसाब से प्लानिंग होगी। सो सैटरडे की अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है, और रात को जो है वो टेम्परेचर में काफी गिरावट होगी, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो गिर जाएगा। चांसेस ऑफ बारिश कोई भी नहीं, 5%, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, और सूरज खिलखिलाता हुआ आपको नजर आएगा। संडे को 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 40% चांसेस है बारिश के, जिसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि संडे यानी कि अभी 2 दिन बाद की बात हो रही है और ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज्यादा बाद की बात हो रही है, सो ऐसे में उसमें चेंजेस आ सकते हैं, पर अभी मुझे 40% चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं सैटरडे को, नहीं संडे को, बारिश के। और 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, बट मुझे मौसम जो है वो खिला खिला भी नजर आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि बारिश में फेरबदल हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। मैंने आपको बता दिया है मौसम कैसा होने वाला है और क्या हो सकता है। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं, क्योंकि भाई गाने जबरदस्त चलते रहें तभी मजा आता है।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत प्रजित। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

साथ जब भी अमेरिका बात करता है पीस की तो शर्म आती है और हंसी भी आती है। मतलब शर्म उनको आनी चाहिए लेकिन हमें आ जाती है क्योंकि अमेरिका पीस की बात करता है। हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक को हुए 80 साल हो गए। जी हाँ, 81 ईयर्स, नॉट 80 बट 81 ईयर्स। वो बॉम्ब जिन्होंने 2 लाख लोगों से ज्यादा की जान ली, 2 लाख लोग, मतलब कितनी ही बड़ी, 200,000 पीपल गॉट किल्ड इन दैट अटैक। जी हाँ, हिरोशिमा एंड नागासाकी। आप लोग बोलोगे कि वाई हिरोशिमा एंड नागासाकी ओनली, मतलब कोई और जगह क्यों नहीं? वेल, जापान की मिलिट्री बेसिस जहां पर एयर रेड काम नहीं कर रही थी, वहां पर इन बॉम्ब्स को गिराया गया। ऑफकोर्स उनके निशाने पर क्योटो भी था, ऑफकोर्स उनके निशाने पर और भी बहुत सारी जगहें थी, लेकिन बहुत सारी चीजें देखी गई कि वेदर कैसा होगा, और मंथ्स की, मतलब महीनों की प्लानिंग के बाद यह अटैक किया गया था। और इसी के बाद जापान ने सरेंडर किया और वो जापान पर सारी की सारी सेंक्शंस लगी जो कि ऑफकोर्स आज भी दिखती हैं। जी हाँ, आज अमेरिका कहता है जापान को कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, आपको सेना की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब इतनी सारी चीजें। लेकिन एक चीज अमेरिका बिल्कुल नहीं कहता कि आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, वो कभी नहीं कहता। अमेरिका जापान की रखवाली करने का ढोंग करता है, बट वही अमेरिका है जिसने 81 साल पहले, यानी कि 81 ईयर्स पहले हिरोशिमा नागासाकी को अपना निशाना बनाया। और जैसे मैंने कहा कि 2 लाख लोग, यानी कि 200,000 लोगों से ज्यादा की मौत इसमें हुई। मैं आपको बताती हूं कि क्यों जो है इन जगहों को निशाना बनाया गया। ऑफकोर्स मिलिट्री बेसिस और ये हैवीली पॉपुलेटेड थे। अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है हम जापान को पहुंचा सके, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना। नागासाकी वॉज नॉट ऑन द लिस्ट फर्स्ट, क्योटो वॉज ऑन द लिस्ट, बट फिर वेदर ने साथ नहीं दिया और बहुत सारे और वेरिएबल्स वहां पर आए जिसकी वजह से उन्होंने उससे बाद में जो है वो वहां पर उसमें डाला, इंक्लूड किया। जी हाँ, अब यहां पे क्योटो के साथ साथ कोकुरा भी, जी हाँ, उस निशाने पे था। मतलब ये जगहें, जैसे मैंने कहा कि हिरोशिमा नागासाकी अब आपको उतना ज्यादा हैवीली पॉपुलेटेड नहीं नजर आता होगा, लेकिन वो वक्त 81 साल पहले का वक्त जापान के लिए कुछ डिफरेंट था। उस वक्त ये जगहें बहुत ज्यादा जनसंख्या वाली थी, लेकिन अमेरिका ने सोच लिया था कि हम अपने बॉम्ब्स को टेस्ट भी कर लेंगे, मरेंगे लोग तो किसी और कंट्री के मरेंगे, हमको किया ही है। एंड दैट्स व्हाट दे डिड, एंड द ऑडेसिटी ऑफ देम टॉकिंग अबाउट पीस in any other country is so hilarious, right? मतलब आप दूसरों की countries में involve होते हो, आप दूसरों की countries को जो चला रही है सरकारें उनके बारे में आप argument करते हो, उनके बारे में आप comment करते हो, लेकिन what did you do to Japan? आपने क्या किया जापान के साथ? So yeah, I think 81 साल बाद भी ये चीज, ये बॉम्ब अटैक्स, ये इतना घातक हमला जापानीज लोग भूलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज अमेरिका जापान के साथ बहुत ही मजेदार दोस्ती का ढोंग करता है। आई डोंट नो जापानी लोग इस चीज को कभी भुला पाएंगे या नहीं, या उन्होंने भुला दिया है या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये भुलाने लायक चीज तो डेफिनेटली नहीं है। और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ये भी एक बहुत ही बड़ी और पक्की बात है। जी हाँ, इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और सेंक्शंस के बाद आज जो है वो जापान वो आपको दिख रहा है, लेकिन उसको सरेंडर कराने के लिए इतना घातक हमला। या वही कंट्री जो कि कहती है कि हम हर जगह शांति बनाए रखते हैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जो फंड रेज किए हैं उन्होंने उसे डोनेट किया है चेल्टनहम जनरल हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्हें स्ट्रोक आया था, जब उन्होंने सफर किया था 2025 में स्ट्रोक से, तो वहां पर उन्होंने देखा था कि लोगों को जरूरत है इस चीज की, एंड दैट्स व्हाई शी डिड व्हाट शी डिड। एंड यू नो व्हाट शी सेड? जी हाँ, आई जस्ट गेट बोर्ड ऑफ लाइफ अदरवाइज। जी हाँ, उन्होंने यही कहा। और आपको अगर नहीं पता है कि विंग वॉकर क्या होता है ना, तो जरा जरा आप गूगल करके देखिए। लिटरली एक प्लेन जो है वो उड़ रहा होता है और उसके ऊपर एक पोल होता है और उसके साथ आपको जो है वो बांध दिया जाता है। प्लेन हवा में उड़ रहा है और आप उस पोल पे लिटरली बंधे हुए हो उसके टॉप पर, लिटरली। आई मीन दैट्स सच अ खतरनाक साइट, राइट? मतलब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा है, वाज लाइक वाओ, आई मीन शी इज जस्ट अमेजिंग। जी हाँ, और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि वो कोई नॉर्मल प्लेन नहीं होता है, वो प्लेन होता है जो डाइव्स करता है, जो स्टंट्स करता है, जो ऊपर नीचे मतलब हर 360 डिग्री में जो है वो घूमता है, और उसी के टॉप पे पोल पर उन्हें बांध दिया जाता है, मतलब किसी इंसान को बांध दिया जाता है। एंड या दिस इज द लेडी हु डिड दैट। या आपने सही सुना, 97 ईयर्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सही कहा है, और लाइफ बोरिंग हो जाएगी अगर हम ऐसे एडवेंचर्स नहीं करेंगे। बट मैं इतना ही कहूंगी कि उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप ले सकते हो। आई थिंक शी कैन डू इट बिकॉज शी डिड इट प्रीवियसली। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लगता है आपको कि कोई उम्र जो है वो होती है लिमिट आपका कुछ भी खतरनाक और तूफानी करने के लिए? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो अगर आपके पास कोई पुराने गाने से रिलेटेड फरमाइश है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, जल्दी से भेज दीजिए और हम उस गाने को आपके लिए यहाँ प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ, पूरी तरह से तैयार हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसके साथ हम इस सेगमेंट को शुरू करेंगे, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ना सिर्फ खूबसूरत गाने होंगे इस सेगमेंट में, बल्कि हम आपको किस्से भी सुनाएंगे पुराने उस एरा के स्टार्स के जो आपके बहुत ज्यादा चहेते हैं। जी हाँ, तो जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सबसे पहला वो है छू लेने दो नाजुक होंठों को। नाउ ये गाना जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। बट कैन यू गेस कि ये गाना मेरी तरफ से आया है किसी और की तरफ से? वेल ऑफकोर्स आज ये मेरी तरफ से ही आया है, मतलब मैं ही आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ। लेकिन ये रिकमेंडेशन रहा है बहुत ही खास शख्सियत की तरफ से। जी हाँ, हमारे बॉस मिस्टर जतीश पूरन जी ने एक बार इस गाने को रेकमेंड किया था हमें, एंड गेस व्हाट, ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए शामिल हो गया। इसीलिए मैं कहती हूं कि सर आपकी जो चॉइस है और रेकमेंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब आप लोगों ने अगर ये गाना नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, क्योंकि राजकुमार और मीना कुमारी की मूवी का ये गाना लिटरली ऐसा, मतलब आप इसके बोल पर जाइए, इसकी धुन पर जाइए, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनते हैं इस गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना ये गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और अगर आप एक बार इसे सुन लोगे तो आप इसके दीवाने बन जाओगे हमेशा के लिए। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। जी हाँ, गाना बहुत ही खूबसूरत है और राजकुमार है इसमें, तो जरा राजकुमार की ही बात कर लेते हैं। जी हाँ, एक वक्त था राजकुमार और दिलीप साहब एक फिल्म में काम कर रहे थे, और वहां पर दिलीप साहब को एक थप्पड़ जो है वो लगाने का काम जो है वो राजकुमार को दिया, और वो टेक उन्हें लेना था, पर उन्होंने वो थप्पड़ इतनी ज्यादा जोर से मार दिया, और सबको पता था कि इतनी जोर से थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी, और उसके बाद राजकुमार हंस रहे थे। दिलीप कुमार को ये बात समझ आ गई और फिर वो वहां से सेट छोड़कर चले गए। एंड दैट वाज द रीजन उसके बाद उन्होंने फिर कभी काम नहीं किया, ऑफ कोर्स सुभाष घई की फिल्म के अलावा। जी हाँ, जो कि बहुत बाद में हुई। अब कल ही की बात है, मैं इन दोनों फिल्म स्टार्स की, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत ही बड़े फिल्म स्टार्स रहे हैं, ऑफ कोर्स यूसुफ साहब यानी कि दिलीप कुमार के बारे में बात करें तो वो तो खुद में ही एक इंस्टीट्यूट रहे हैं। मतलब हर एक कोई, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कोई भी आप जो है एक्टर ले लो, सबके सब जो है वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं ऑफ कोर्स दिलीप साहब से कि उसके बारे में वो आज भी बात कर सकते हैं। जब मैंने उन दोनों की फिल्मोग्राफी को ऑफ कोर्स जो है देखा, उसको जो है अच्छे से प्रोसेस किया, तो मुझे पता चला कि लोगों का ख्याल क्या था। जी हाँ, ऑफ कोर्स राजकुमार अपने आप को बहुत बड़ा नायक मानते थे, और इसमें कोई दोराय भी नहीं है, राजकुमार सच में बहुत ही बड़े एक्टर थे। बट व्हेन कंपेयर टू दिलीप साहब, जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ऐसे तो तुम कहती हो कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए किसी आर्टिस्ट का, लेकिन ये मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है। जी हाँ, यहाँ पर दिलीप साहब की जो पॉपुलैरिटी थी, फैन फॉलोइंग थी, मतलब ही वाज वन ऑफ दोज थ्री एक्टर्स जिन्होंने एक्टिंग को डिफाइन किया है। जी हाँ, और ये वो टाइम था जब देवानंद साहब, दिलीप साहब और राज कपूर की तूती बोलती थी। मतलब वो तीन एक्टर्स ने लिटरली 1950s और 1960s को डोमिनेट किया है। और अगर मैं आपको कहूं कि दिलीप साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो 1950s से लेके 1960s तक बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई, तो क्या आप मानेंगे? पहले आप लोग बोलोगे ऑफ कोर्स हम मानेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर दिलीप कुमार। जी हाँ, पूरे 1950s और 1960s को डोमिनेट करना कोई छोटी बात नहीं होती। जी हाँ, सो ऐसे में जानी कितना भी कह लें, दिलीप साहब की शख्सियत और दिलीप साहब की वो एक्टिंग, उनका करियर, उनकी फिल्मोग्राफी, सब एक ही चीज बताती है कि आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना होता है, चाहे आप कितने भी स्टार बन जाएं। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपको इमेजिन करना है शोले की अलग कास्ट, मतलब शोले की कास्ट, लेकिन जो कास्ट है अभी उसके अलावा किसी और एक्टर को उस कास्ट में इमेजिन करना है, आई मीन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू नो दैट, तो आप किसको इमेजिन करोगे? मतलब आप जय के कैरेक्टर में किसको इमेजिन करेंगे, वीरू के कैरेक्टर में किसको इमेजिन करेंगे? आई थिंक बसंती तो सिर्फ हेमा मालिनी को ही होना चाहिए, उनके अलावा और कोई इमेजिन नहीं किया जा सकता। तो आप मुझे बताइए कि आप किसको इमेजिन कर सकते हो। चलिए, सोच लिया होगा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी थे, जिन्होंने ये लेजेंडरी मूवी बनाई है शोले, उसके लिए उन्होंने जे के कैरेक्टर के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को पसंद किया था। क्या आप मान सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर उस मूवी में होते, मतलब शोले में वीरू के साथ वो दोस्ताना निभाते हुए आपको शत्रुघ्न सिन्हा जे के कैरेक्टर में दिखते, तो आपको कैसा लगता? आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा शोले बन गई है और अब उसको रीइमेजिन किया ही नहीं जा सकता। हर किसी ने अपने रोल को इतने अच्छे से प्ले किया है कि हमें उसे फिर से किसी डिफरेंट तरीके से इमेजिन करना ही नहीं है। वी डोंट वॉन्ट टू, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर डिसीजन। जी हाँ, अब आपको जैसे मैंने बताया कि रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे जे के कैरेक्टर में शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन यहां पर सलीम जावेद जिन्होंने लिटरली ये मूवी लिखी थी शोले, उसके लिए उन्होंने रमेश सिप्पी को मनाया कि हमें लगता है कि जे के कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी मूवी जंजीर देखी थी और जंजीर को देखकर सलीम जावेद दोनों ही उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उन्हें लगा कि जे के कैरेक्टर में वो बहुत ज्यादा जचेंगे, एंड दैट्स हाउ अमिताभ बच्चन केम ऑन बोर्ड। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को भी मनाया, उन्होंने धर्मेंद्र को भी थोड़ी सिफारिश करने के लिए कहा और धर्मेंद्र ने भी रमेश सिप्पी को कहा कि ठीक है, मुझे भी सच में ऐसा लगता है कि जय के कैरेक्टर में अमित जो है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। फिर क्या है, कास्ट फाइनल हो गई, मूवी बनी, मूवी रिलीज हुई, पहले इतनी हिट नहीं हुई लेकिन थोड़े वक्त बाद वो इतनी हिट हो गई कि आज भी उसके हिट होने के चर्चे जो है वो आपको अपने आजू बाजू सुनने को मिलते हैं। लेकिन अगर सच में इमेजिन करने का मौका दिया जाए तो आप किसको करोगे जे के कैरेक्टर में इमेजिन? आई मीन सोचने में क्या ही बुराई है, राइट? लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि संजीव कुमार और साथ में वीरू यानी कि धर्मेंद्र से बहुत कम फीस मिली थी अमिताभ बच्चन को, सबसे कम फीस लेने वाले व्यक्ति थे वो उन तीनों एक्टर्स में। क्या आप गेस कर सकते हैं कितनी फीस? गूगल नहीं करना है, गेस करना है। जो यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, घड़ी ने इशारा कर दिया है और घड़ी कह रही है कि निविया शर्मा आप जाइए, वापस आइए कल टॉप 10 हॉट 10 में, और उसके बाद हमें थोड़ी सुकून की सांस लेने दीजिए। मंडे को आना, उससे पहले मत आना। जी हाँ, अब ऑफ कोर्स ठीक है, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। सो आई होप आपने हमारे आज के प्रोग्राम को इन्जॉय किया होगा। बीच में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम जो है वो थोड़ी देर आपसे नहीं मिल पाए थे, लेकिन उसे हमने सॉर्ट आउट कर लिया। सो ऑल्स वेल If it ends well, and yeah, that's about it. Healthy रहिए, happy रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मिलना होगा अब आपसे कल, और तब तक के लिए बाय बाय, see you, टाटा, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2032 ओलंपिक के लिए शो ग्राउंड्स का रीडेवलपमेंट। 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारियों के तहत ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स के $287.5 मिलियन के रीडेवलपमेंट प्लान की पहली झलक जारी की गई है। इसमें मुख्य एरिना का अपग्रेड और नया ग्रैंड स्टैंड शामिल है। वहीं ईरानी महिला फुटबॉलरों और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता, जी हां, मार्च में ऑस्ट्रेलिया से शरण मांगने वाली दो पूर्व ईरानी महिला फुटबॉल फातिमा और आतिफा को, फुटबॉलर खिलाड़ियों को ब्रिस्बेन में एक समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दे दी गई है। इसी के साथ ब्रिस्बेन हाउसिंग मार्केट में सुस्ती का अनुमान। केपीएमजी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिस्बेन के प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले सालों के मुकाबले अब कीमतों की बढ़ोतरी की रफ्तार में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। वहीं डार्क वेब मामले में अदालत का बड़ा फैसला। ब्रिस्बेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बच्चों के शोषण से जुड़े डार्क वेब नेटवर्क के एक मामले में कबूलचर के रहने वाले 59 साल के एक व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं सर्दियों की धुंद और ट्रैफिक अलर्ट। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में सर्दियों की सुबह पड़ने वाली घनी धुंध के चलते ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और प्रमुख हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड पर असर देखा जा रहा है। वहीं चरलेवल घटना पर जांच जारी। ब्रिस्बेन के पश्चिमी इलाके चरलेवल में पुलिस घेराबंदी के बाद हुई एक दुखद घटना की निष्पक्ष जांच पुलिस की इंटरनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कमांड कर रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार भारी बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है और जिला प्रशासन की टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। वहीं हिंद महासागर में मिसाइल टेस्ट की तैयारी। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के कॉरिडोर में उड़ानों पर स्थायी पाबंदी जारी की है। माना जा रहा है कि DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ओडिशा तट से अग्नि सीरीज की एक लंबी दूरी की मिसाइल का सफल ट्रायल करने जा रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित अरुणाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने केई पान्योर जिले का जायजा लिया है और केंद्र सरकार की तरफ से राहत और रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे सपोर्ट का भरोसा दिया। इसी के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के सेक्सुअल असॉल्ट मामले में दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के बरी करने वाले फैसले को पलट दिया है। वहीं केरल में एक जाबाज हीरो को श्रद्धांजलि। केरल की जनता राजेश नाम के एक शख्स को याद कर रही है जिन्होंने बाढ़ के पानी में फंसने पर अपना लाइफ जैकेट एक किसान को दे दिया और खुद अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन तेज। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। छात्र भर्ती प्रतिक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले यमन में भारी सैन्य झड़पें। यमन में हूती विद्रोहियों के ताजा मिसाइल और ड्रोन हमलों में 50 से ज्यादा सरकारी सैनिकों की मौत हो गई है। इस हमले में क्षेत्र में सुरक्षा तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। वहीं हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वार्ता। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित समुद्र लेन बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही फिलहाल काफी धीमी हो गई है। वहीं सऊदी अरब में नागरिक घायल। सऊदी अरब के दक्षिण सीमावर्ती इलाके में यमन की ओर से हुए हमले में एक 4 साल के बच्चे समेत 10 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल जारी। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल अब भी गर्म है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया बयान के बाद क्रिकेटर आकिब अल हसन के घर पर हमले की खबर सामने आई है। वहीं ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जलमार्गों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। वहीं प्रशांत महासागर में अल नीनो का असर, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पैसिफिक ओशन में सक्रिय अल नीनो के कारण इस साल दुनिया के कई हिस्सों में तापमान असामान्य से ज्यादा सूखा पड़ने की संभावना है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की सीडिंग, नई दिल्ली में होने वाली BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए सीडिंग का ऐलान हो गया है। वहीं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की जीत, कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने शानदार खेल दिखाते हुए विमेन सिंगल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ लियोनेल मेसी का शानदार कमबैक, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी के लिए अपनी वापसी के मैच में ही दो शानदार गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज की तैयारी, भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन में जुट गई है। इसके साथ विमेंस एशिया कप का शेड्यूल जारी, दुबई में होने वाले विमेंस T20 एशिया कप का शेड्यूल आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं सेंट लुइस चेस में प्रज्ञानंदा का जलवा, सेंट लुइस चेस टूर्नामेंट के ब्लिट्स राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान के सिंदारोव को हराकर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन डेली from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Prathak Pajit. Ek baar phir ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
4: ਦ ਲੈਜੰਡ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਲਾਈਵ ਇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ
5: ਸੈਟਰਡੇ 15th ਅਗਸਤ 6:30 PM
3: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ
5: ਐਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰਵਾਟ। ਟਿਕਟਸ ਐਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਕਟ।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: नाचे सारे हसी आह नाचे नाचे सारे जवां आह नाचे नाचे।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

मैं हां संदेश अलख शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जबिला हो चुके हैं हुन तक दी हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत। रुक करदे पंजाब दे वल जिते कांग्रेसी विधायक ने सदन विधायकां ने सदन की कार्रवाई शुरू होने तो पहला विधानसभा के बाहर सूबा सरकार खिलाफ बेअदबी मामलों में इंसाफ विच देरी नूं लैके प्रदर्शन किया। विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा विधायक सुखविंदर कोटली बलविंदर सिंह धालीवाल समेत काफी सारे होर उथे आगू मौजूद रहे जिन्होंने बेअदबी मामले विच दोषियों नूं सजा ना दवाए जाण नूं लैके आम आदमी पार्टी की सरकार खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन विच प्रवेश किया। दोष लगाया कि बेअदबी मामलों विच दोषियों नूं अजे तक सजा ना मिलना ते पीड़ितों नूं इंसाफ तों वांझा रखना आप सरकार की सब तों वड्डी नाकामी है। उन्होंने कहा है कि बैबल कलां कोटकपूरा ते बरगाड़ी बेअदबी मामलों विच मजबूती नाल पैरवी करन दी बजाय सरकार ने सारे केस पंजाब तों बाहर तब्दील कर दिते। उधर भारत की मशहूर तहलका मैगजीन के सबका संपादक तरुण तेजपाल 2013 के गोवा जिनसी शोषण मामले में दोषी ठहराया गया। बंबे हाई कोर्ट की गोवा बैच ने 2021 के सैशन कोर्ट के फैसले को उल्टा दिता तेजपाल दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इस फैसले से राहत प्रकट करते हुए पीड़िता की मां ने कहा है कि साल की कानूनी लड़ाई तो बाद इस फैसले ने उस भारी बोझ तो राहत दी है। उसने कहा है कि मेरे मन तो एक वड्डा बोझ उतर गया है। इस साल बहुत दर्दनाक सन। इन साल तक हिम्मत बनाई रखने लिए बहुत ताकत की लोड़ सी। उधर इस मामले से सजा सुनाए जाने तो बाद पत्रकारों नाल गल करते हुए 62 साल तरुण तेजपाल ने कहा है कि पिछले 13 साल तो उन्होंने बदले की भावना नाल पेश आया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैनू पूरी न्यायपालिका से विश्वास है कि एक जज होगा जो सच्चाई नू देखेगा। असी सारे सबूत जनता के सामने पेश करांगे। मेरे को 10 बार अपनी बरी नू जायज ठहराउण लई काफी सबूत हैं। अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए तेजपाल ने कहा है कि हुण फैसले विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विच अपील करनगे। दस दिन कि आखिर पूरा मामला की है तो पूरी घटना नवंबर 2013 की है। तहलका मैगजीन ने गोवा विच थिंक फेस्ट नामक एक सालाना समागम करवाया से। इस समागम दौरान तरुण तेजपाल ने 7-8 नवंबर नूं होटल दी लिफ्ट विच एक जूनियर साथी दा दो वार जिनसी शोषण किया। शिकायत तों बाद उसनूं नवंबर 2013 दे अखीर विच गिरफ्तार कर लिया गया सी। शुरू विच तेजपाल ने इस घटना लई अफसोस प्रगट किया ते इसनूं स्थिति दी गलतफहमी दा कारण दस्सिया, पर बाद विच अपना दावा वापस लै लिया ते इसनूं एक राजनीतिक साजिश कहा सी। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जे गल करिए नरेंद्र मोदी ने वीडियो नूं हटाउण नूं लैके मैटा दीआं मुश्किलां लगातार जारी हन। यह विवाद वीरवार नूं भी जारी रहा। मैटा की ग्लोबल टीम ने भारतीय कानूनों की पालना नूं लैके केंद्र सरकार नाल चर्चा की। रिपोर्ट अनुसार मैटा की ग्लोबल टीम दे भारत विच 3-4 दिन होर रहण दी उम्मीद है। इस समय दौरान उन्हां दीआं सरकारी अधिकारियों नाल होर मीटिंगां होणगीआं। इन्हां मीटिंगां विच वट्सएप नाल संबंधित मुद्दिआं ते भी चर्चा होण दी संभावना है। सरकार मैटा दे एलगोरिथम समग्री संचालन पालना अभ्यासां जांच अते संतुलन अते सुरक्षा उपावां बारे जानकारी मांग रही है। जिस विच बाल जिनसी शोषण समग्री अते डीपफेक समग्री दा मुकाबला करन लई वरते जांदे सिस्टम शामिल हन। रिपोर्ट अनुसार केंद्रीय अधिकारियों ने कहा है कि अमरीकी कानूनों के आधार पर प्लेटफॉर्म नूं भारत विच नहीं चलाया जा सकता। यह तकनीकी मामले हैं ते हर पहलू नूं समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अगे कहा है कि सारियां संस्थावां वांग सारे प्लेटफॉर्मां दीआं समाज ते कानून प्रति जिम्मेवारियां हन। उधर भारत ने पुलाड़ खोज विच एक होर माणमत्ता पल प्राप्त किया। भारतीय मूल दे नासा पुलाड़ यात्री अनिल मैनन ने वीरवार नूं अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन तो बाहर निकलते हुए अपनी इतिहासिक पहली स्पेस वॉक पूरी की है। यह उन्होंने करियर विच एक वड्डा मील पत्थर है। अनिल मैनन दे नाल इस 6.5 घंटे के औखे मिशन विच नासा के तजर्बेकार पुलाड़ यात्री जैसिका मेयर भी शामिल हुई जो अपने 6वें करियर ईयर दे स्पेस वॉक कर रही सी। इकट्ठे मिलके उन्होंने स्पेस स्टेशन दे पावर सिस्टम नूं अपग्रेड करन दा महत्वपूर्ण काम कीता।
ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸੋਨੀ 107.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है इस लिस्ट जी मेरे को उस है जी रजनीकांता, सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत का असली नाम की है बहुत नहीं पता होना, जिन्होंने नहीं पता मैं दस दिनी हाँ। असली नाम है रजनीकांत शिवाजी राव गायकवाड़। जद उन्होंने कर्नाटक की फिल्मी दुनिया में कदम रखा से ना तो उन्होंने नाम बदल दिता गया। इंडस्ट्री उन्होंने गॉडफादर मशहूर डायरेक्टर के बालाचंदर ने उन्होंने रजनीकांत नाम दिता। उस सिनेमा के परते एक दमदार यादगार नाम चाहते सी, इसलिए उन्होंने अपनी एक फिल्म के किरदार तो प्रेरित होकर यह नाम चुनिया। इस नाम ने अगे चल के भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिता है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डिजिसेल आपको दे रहा है मौका to win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: जी आयन जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 ते 4-6 संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। अगला जेड़ा नाम है वह है जो बहुत ही खूबसूरत जी अदाकारा दा 90s दी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अदाकारा है ते आज भी एवरग्रीन है उन्हीं खूबसूरती बरकरार है। नाम है जी तपू। जी हाँ, अपनी बेहतरीन अदाकारी दे लई मशहूर एक्ट्रेस तपू दा नाम पहला कुछ होर सी, थोड़ा औखा सी, पर मैं तुहानू दस दिंदी हां, नाम सीगा जी तबसुम फातिमा हाशमी। जद उन्हां ने फिल्मां विच एंट्री लई ना तां अपने इस वड्डे नाम नूं छोटा करके तबू रख लिया। उन्हां नूं लग्या कि वड्डे पर्दे दे लिहाज नाल नाम काफी क्रिस्प छोटा ते एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस वाला रहेगा। नाम बदलण दा इह फैसला फिल्म मेकर्स दे लई मार्केटिंग दे हिसाब नाल काफी सौखा रहा ते इस नाल उन्हां दी यूनीक पहचान भी बनी रही।
1: मुंडा साधुआं दा

हाँ जी जी आया रुझी पर बेड़ा हो चुके तो टाटा बाय बाय कहता जी आया फिर भी कह लिया क्योंकि एक नाम बहुत इंपोर्टेंट सी जिस बारे थानू दसना बेहद जरूरी सी मैं सोचा जान तो पहला उन्होंने बारे थानू दस ही दिनी है तो नाम है चीत रेखा जी हाँ बॉलीवुड की आवर क्वीन ब्यूटी रेखा ता असल नाम रेखा नहीं सी असल नाम सी जी भानु रेखा गणेशन उन्होंने जब उन्होंने सिनेमा दी दुनिया विच कदम रखिया ना तो उन्होंने अपना नाम छोटा करके सिर्फ रेखा रखना पिया ए नाम ना सिर्फ बेहद सिंपल अते एलीगेंट सी बल्कि आम दर्शकों के लिए इसनु याद रखना भी काफी सौखा सी अगे चल के सिर्फ एक नाम वाली अनोखी पहचान भारतीय सिनेमा के इतिहास विच सब तो आइकोनिक शख्सियतों विचों एक बार की है, इस गल दे नाल तां मेरे ख्याल सारे ही सहमत ने बाकी थानू के कौन एक्टर है जिसका असली नाम ज्यादा वधिया लग्या हैगा है चेंज किते हुए नालों वो तुसी सानू जरूर दस्यो रेडियो ब्रिसोनी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जिहदे brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करते रहा करो है ना तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं हुणे वापस आउनी आ ना ना ना ना कल वापस आउनी आ करन दे लई ठेर सारियां गल्लां ते चलो फिर जाण वेले इक्को गल कहणी है कि रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

0: कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 38 1360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: मैं निकला

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असि तुहाडे कोल आ रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

0: योगी से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी मैं जा रहा। लगता है रूम में रह गए।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

प्रिय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय ठीक 6:30 तो बज चुका है, यानी कि इस समय 27 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और अब समय हुआ मौसम का खबर का। आज के मौसम के खबरों में हमने जो मौसम की खबर पेश करने जा रहे हैं, इसे मौसमी दफ्तर ब्रिजबेन ने हमें प्रदान किए हैं। और आज 8 अगस्त 2026 है, आपको बतला दें। और आज का दिन बड़ा शुभ तथा मंगलमय हो सबके लिए। सर्वप्रथम चलें साउथ ईस्ट क्वींसलैंड का मौसम का खबर के बारे में हम जिक्र करते हैं। और यहाँ पर सनी रहेगा आज ब्रिस्बेन में, और 23 दिन में रात्रि को 10, हवा का रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और 6:24 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:22 पर सूर्य अस्त होगा। और इप्सुच में इसी प्रकार मौसम होने के साथ साथ 24 दिन में रात्रि को 4, हवा का रफ्तार 11, सनशाइन कोस्ट में 21 दिन में रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 14, और गोल्ड कोस्ट में 22 दिन में रात्रि को 11, हवा रफ्तार जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। नेंडी और लंबासा ले चलते हैं, जहां पर ज्यादातर धूप निकलेगी। 24 रहेगा नेंडी में दिन में, रात्रि को 20, हवा का रफ्तार 13। 6:30 सूर्य उदय हुआ है, 6:00 समाप्त होगा या अस्त होगा। और लंबासा में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 26 दिन में रात्रि को 19, हवा का रफ्तार 27। सुबह में हल्की बारिश हो रही है, 23 दिन में रात्रि को 21। एकदम ब्रिस्बेन का टेम्परेचर है प्रिय

हुआ है 5:40 पर सूर्यास्त होगा। मुंबई ले चलते हैं जहां बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, 30 ज्यादातर तापमान दिन में, रात्रि को 28, हवा की रफ्तार 23। अमृतसर में वर्षा होगी और 29 दिन में, रात्रि को 27, हवा की रफ्तार 10। नई दिल्ली में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, 33 दिन में, रात्रि को 28, हवा की रफ्तार 18। और 6:45 सूर्योदय होगा, 7:07 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम की खबर। और आपको बतला दें कि हमारा स्टूडियो का नंबर है 3279-1701। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो याद रहे, या लाइव एयर पर आना चाहते हैं तो 0411-127-035। दोबारा इसको बतलाता हूँ, 0411-127-035। और श्रोतागण, हमारे पास एक भेंट वार्ता है जो हम 7:45 लेकर आएंगे। पंडित सनत पांडे जी हमें कुछ जानकारी देंगे जो नया मंदिर का निर्माण हो रहा है ब्रेकनरिज में, उसके विषय में। तो प्रोग्राम आप सुनते रहिएगा और 8:00 रानी क्रिएशन का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके सेवा में लेकर उपस्थित हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए, आप सबका एक बार फिर स्वागत है रेडियो ब्रिजबानी पर। शनिवार है, मौसम बदल रहा है, सब कुछ बहुत खूबसूरती से चल रहा है यहाँ। और आगे मैं क्या बोलूं आपसे, तो आज मैं सोचा हूं कि आज का प्रोग्राम का शुरुआत मैं करूं, क्योंकि आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। और चलें तो इसे हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, ऐसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिखा। तो चलो सुनते हैं, उम्मीद कर रहा हूं प्रिय श्रोतागण आपको अच्छा लगेगा। और आप रेडियो ब्रिजबानी सुन रहे हैं जिसका प्रसारण 1700 AM के माध्यम से 17 माइल रोक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है।

0: तो मित्रों, ये था एक राम भजन जो आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ए रेडियो ब्रिजवानी, आपके बारे में इसके बारे में कह दूँ आपसे कि हम यहाँ से अपना प्रसारण 1700 AM के माध्यम से सिमरन मार रॉक्स ब्रिजबन से कर रहे हैं। तो चलें खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला खबर आज का लाइव।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: और इस समय 18 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। आगे बढ़ते हुए चलते हैं कुछ अब फिल्मी गीतों की तरफ। और पहला फिल्मी गीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार जी का 1970 का सुपरहिट गीत। कौन सा है सुनिए।

जी मित्रों, 13 मिनट हुए हैं 6:07, जी नहीं बाकी हैं इस समय, क्या मैं बोल रहा हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चले एक बहुत ही मज़ेदार गीत है, सुनी सुनी अखियों में। ये बहुत प्यारा सा दोगाना है जिसे अनुराधा पोटवाल जी सुरेश वादकर जी के साथ अदा कर रही हैं आपके लिए।

0: जय मित्रों, सुनी सुनी आंखों से गीत आप सुन रहे थे, और चलें हम विज्ञापन की तरफ और उसके बाद फिर कुछ और मजेदार गीत आपको सुनवाएंगे। तो चलें, आज का पहला जो विज्ञापन है इस टाइम पर ये है।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: मित्रों, मैं परमानंद हूँ संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना है, कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी द्वारा अदा किया गया, सुनते हैं।

0: मित्रों, ये गीत हमें सात तक तो ले गया, लेकिन एक गीत बाकी है। मैं सोचा इसको बजा दूं मैं, उसके बाद हम ले चलेंगे आपको पुराने गीतों की दुनिया में। और पुराने गीतों में आज जो गीत मैं बजाऊंगा आपके लिए, वो नए अंदाज में रहेगा। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो गीत जो मैं बजाऊंगा आपको बहुत अच्छा लगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा हम जब किसी को देखते हैं, और खास तौर से जब उनके आँख को देखते हैं, तो कभी कभी कुछ बहुत सारा संदेशा वो आँख हमें दे रहे हैं या इशारा कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। उदित साहब हैं।
1: मुझ

0: जो मित्र जादू भरी आंखों वाले सुनो, ऐसे मुझे तुम देखा ना करो। अब इसी के साथ 4 मिनट हुए हैं इस समय 7 बजकर और परमानंद का साथ है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 7:45 हम लेकर आएंगे एक भेंटवार्ता पंडित सनत पांडे जी के साथ, तो जरूर सुनिएगा। और साथ में आपको ये भी कह दें कि आज का जो मौसम है कुछ इस प्रकार है और धूप निकलेगी। मौसम बदल रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई हम विंटर से छुटकारा पा गए, लेकिन अभी नहीं, शायद एक ट्रेला बाकी है, वो जब आएगा तो उसके बाद में फिर देखा जाएगा। तो चलें 1-2 विज्ञापन ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे। कहाँ ले चलेंगे? पुराने गीतों की दुनिया में।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: जय मित्रों, एक कुछ विज्ञापन थे और एक बार फिर 7:45 पंडित सनत पांडे जी से मैं एक भेंट वार्ता मैं लेकर आया हूं, उसे पेस्ट करूंगा तो जरूर सुनिएगा। और 8:00 रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आप सुन सकेंगे। अब जो प्यारा सा मौसम है, प्यारे मौसम में भाई हमें मनोरंजन के ख्याल से हैं और बहुत कुछ हो रहा है। बाग बगीचे में लोग जाएंगे, कुछ छेड़छाड़ करेंगे और कुछ यहाँ वहाँ एक दूसरे से बातें करेंगे। तो चलो आज नए अंदाज में कुछ गीतों को पेश करने जा रहा हूँ। पहला गीत है ओ दिलदार बोलो एक बार। प्रदीप भाई, राम राम आपको। और क्या बोलूं आपसे, मैं एक गीत सुनिएगा और जरूर, मैं जानता हूं आप खाट पे नहीं, आप रास्ते में हैं, सुनिए। और उनके साथ जितने हमारे श्रोतागण हैं उन सबको नए अंदाज में कुछ गीत लेकर आया हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगेगा।

0: तो मित्रों कैसा लगा? बहुत खूबसूरत गीत था और उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं सोचा चलो थोड़ा सा बदलते हैं ना सब कुछ और ऐसे गीत थोड़ा सुनाते हैं आपको, ताकि आपका बचपना याद आ जाए, एक बार फिर वही ऊर्जा उत्पन्न होने लगे अंदर अंदर।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service।
0: और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलें, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, सुनाते हैं आपको।

0: जय मित्रों, 1955 मूवी मिस्टर 55 का गीत था जो नए अंदाज में आपको सुना रहे थे हम। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, आप सुन रहे हैं, मैं हूँ परमानंद, वह है संगीत सरगम नमक कार्यक्रम। और आगे बढ़ते हुए गीत तो बजाना है, मगर उससे पहले मैं आपको विज्ञापन की तरफ ले चलता हूँ। विज्ञापन भी बजाना बहुत जरूरी है। चलो हमारे स्पॉन्सर के खबर सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
0: ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਕੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ, ਨਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਆਪਕੋ ਸੁਣਵਾਏਂਗੇ ਹਮ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਘੜੀ ਕਰੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਟਿਕ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ।

0: जय मित्रों, ये लक्ष्मी नगर म्यूजिक का पेशकश था जो आप सुन रहे थे। चलेंगे खबर की तरफ और फिर आगे बढ़ेंगे। एक और गीत है पुराने गीतों में, उसे आपको सुनवाएंगे।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: और आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़ते हुए आपका स्वागत है एक बार फिर संगीत सरगम प्रोग्राम में। पुराने गीतों के अंतर्गत आप कुछ चटनी रिवाइवल गीत सुन रहे हैं। चलें, पड़ोसियन तेरी मुर्गी को रख लो संभाल, अपने समय में बहुत पॉपुलर गीत हुआ था। सोचा चलो वो पुरानी जो आपकी अनुभवें थी, यादगारी थी, ताज़ा करते हैं।

0: तो मित्रों कैसा लगा आपको आज पुराने गीतों में जो हम गीत लेकर आए गए चटनी रिवाइवल सॉन्ग्स। पहले बहुत शादियों में जगह जगह पर ऐसे ऐसे गीत बहुत बजते थे, लेकिन आजकल उतने नहीं। लेकिन मैंने सोचा चलो लोग कभी कभी बोलते हैं यार कुछ ऐसा सुनाना कि कुछ पुराने यादें ताज़ा हो जाएं, तो बस वही किया मैंने। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, उनसे हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। पंडित जी सादर प्रणाम और हमारे श्रोतागण की ओर से नमस्कार आपको।
1: नमस्कार शर्मा जी, सभी को प्रणाम। और हम चलते हैं जल से, कुछ लोग ग्रहण के बारे में पूछ रहे हैं। तो जैसे रक्षाबंधन हमारा 28 तारीख को रक्षाबंधन है, उस दिन भी चंद्र ग्रहण लग रहा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा परमा जी। वो शाम को 5 और 6 के बीच में रहेगा, तो उस समय तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, लेकिन उधर हो सकता है न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, तो ए और यूरोप ये दिशा में दिखाएगा। तो लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है, अगर आप उसके मान्यता देते हैं तो रक्षाबंधन हो सके तो 12 से पहले बांध लें तो अच्छा होगा। और फिर वो रक्षाबंधन की बात है। और एक और ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि है 12 तारीख को। 12 तारीख वाली ग्रहण भी हमें नहीं दिखाई देगा, वो 16 एक्लिप्स है, लगभग टोटल 16 एक्लिप्स हो जाएगा। और जब वो उधर इंग्लैंड और यूरोप उधर दिखाई देगा, और कहते हैं इंग्लैंड में वो सनसेट के समय दिखाई देगा, तो मतलब हमारा इधर सुबह होगा, शायद 2-3 बजे 4 बजे रात के समय होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 10 बजे रात से शुरू होकर 2-3-4 बजे रात तक चलेगा। तो दोनों ग्रहण नहीं दिखाएगा, लेकिन सूर्य ग्रहण लगेगा 12 तारीख को, और जो कि हमारा 13 तारीख में बदल जाएगा, सुबह हो जाएगा। और फिर जो चंद्र ग्रहण है वो 28 को लगेगा, लेकिन वो भी नहीं दिखाएगा, वो शाम को लगेगा जब फुल मून के दिन यानी पूर्णिमा के दिन। तो हो सके तो रक्षाबंधन आप 13 तारीख अगस्त और 27-28 के बीच में बांध लें, क्योंकि रक्षाबंधन का मुहूर्त श्रावण शुक्ल पक्ष में भी आता है। तो चलते हैं हम रक्षाबंधन के भी बारे में कुछ बोल दिए परमा जी, और सभी को रक्षाबंधन और आने वाले जो भी कार्य हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगा 29 से, तो सभी लोग उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं परमा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आने के लिए और ये जानकारी लोगों को प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन था लोगों में और आपने स्पष्ट से कह दिया, और ठीक है वो समझ जाएंगे क्या है, कब कैसे क्या करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी एक बार फिर, और हमारे श्रोतागण की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार, मेरे तरफ से हमेशा की तरह सादर प्रणाम आपको।
1: आपको भी प्रणाम परमा जी और सभी को आशीर्वाद, जय श्री राम।
0: जय श्री राम। तो मित्रों ये थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, हमें रक्षाबंधन और ग्रहण के विषय में कुछ बहुमूल्य जानकारियां प्रदान किए हैं। चलिए एक खबर के साथ आगे बढ़ते हैं।
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
3: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools,

0: आगे बढ़ते हुए चलें, आपके लिए आप कुछ फिल्मी गीतों की तरफ हिमेश रश्मैया जी, पवनदीप और अरुणीता जी की आवाज़ में तेरी उम्मीद ना करते हुए, एक बड़ा रोमांटिक गीत है, सुने।
1: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मंजिल, न चाहते हुए भी तुमसे उम्मीदें रखता है दिल।

0: ये मित्रों, तेरा प्यार हर एक पल दिल में है और लोगों का टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई जो रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है उसकी जानकारी हमने प्रदान की है। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय पर आकर इसकी जानकारी हमारे श्रोतागण को पहुँचाए हैं। और अभी हम चलेंगे, दो विज्ञापन ले लेंगे, विज्ञापन के बाद एक गीत और उसके बाद हम लेकर आएंगे पंडित सनत पांडे जी को। तो चलो सुनते हैं दो खबरें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक

0: लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए उनको याद कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन या शादी की सालगिरह है। हमारे तरफ से बहुत सारी बधाइयां आपको, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जोड़ी जैसा भी है सदा सलामत रहे। जिनकी जन्मदिन है, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ रहें। जो कुछ आप अरमान रखे हुए हैं, वो मनोकामना मालिक पूरा करे। तो चलो, मेहंदी का रंग, निहाल और शैली।
3: बहारों का मौसम है, आज खुल के इकरार कर लो, अपनी मोहब्बत का आज इजहार कर लो।

0: जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं। मैं हूं परमानंद और यह है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। और हमारे स्टूडियो में इस समय लगभग जी हाँ करीब आ गया, 12 मिनट रह गए 8 बजने में। और वादे के अनुसार अब समय हुआ एक भेंटवार्ता का। और भेंटवार्ता पेश कर रहे हैं हिंदू सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड की तरफ से पंडित सनत पांडे जी। और आपको मालूम है कि 373 ब्रेकन रिज में एक मंदिर और कम्युनिटी हॉल का निर्माण हो रहा है, और इसी शीर्षक पर और उसके अलावा कुछ और जानकारी प्रदान करेंगे। तो पंडित जी, आपका रेडियो ब्रिजबानी के तरफ से हमारे श्रोतागण की और तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे तरफ से आपको मेरा सादर प्रणाम पहुंचे।
1: परमात भैया, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर एक पुनीत कार्य में आप हम सबका सहायता करते हैं। रेडियो पर भी आने का मौका मिलता है रेडियो ब्रिजबानी द्वारा, और आपके द्वारा जो हमको अवसर मिलता है हम अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए पहले और सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे।
0: पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत शब्दों के लिए। और रेडियो ब्रिजबानी का तो यही है कि हम सोसाइटी में हमारा यहाँ जो भी कुछ हो रहा उसके जानकारी प्रदान करें। और रे जते जी का ख्वाब था, स्वप्न था, जो पूर्ण हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए चलें हम हिंदू सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड की तरफ। पंडित जी, ये बतलाएं, ये जो आप निर्माण कार्य करने के लिए योजना बनाए हैं, ये क्या है और कब ये होगा?
1: भाई परमानंद, मैं आपको जानकारी इस तरह से देना चाहता हूँ कि जो गायत्री मंदिर है उसको लगभग 89 से लिया गया था, और आज तक हम इसके इसमें बहुत कुछ कार्य करते आए हैं। और हमारा एक ड्रीम था कि हम आगे चलकर एक अच्छा भव्य मंदिर बनाएंगे, और आज देखे सनातन सेंटर बन चुका है साउथ साइड, उसी तरह हम नॉर्थ साइड एक अपना मंदिर बनाने जा रहे हैं। और इसका हम भूमि पूजन कर चुके हैं, केवल एक जानकारी के लिए और संगठन के लिए, मंगलकारी मंगलमय वातावरण बनाने के लिए एक छोटा सा पूजन होगा। पूजन के बाद लोग हवन में भाग ले सकेंगे, उसके बाद जहाँ पे फाउंडेशन ले किया जाएगा वहां पर जाकर कुछ अपने हाथों द्वारा बालू वगैरह या कुछ सब साथ वहां बंदोबस्त किया गया है, दो मुट्ठी मिट्टी डालेंगे और उनका सहयोग का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि मेरा सहयोग है, मैं इसमें हाथ बटा रहा हूँ, मैं आगे आऊंगा और सदा दिन इसमें मंदिर के हमारा जो आशीर्वाद है सदा दिन रहे, जब तक मंदिर रहे, जितने लोग आगे आते हैं सबका परमात्मा कल्याण करे। और उसमें लोग डोनेशंस भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहे, कोई फोर्स नहीं है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो उनको जो कर सकते हैं, जो उचित है उनके लिए वो कर सकते हैं।
0: पंडित जी, ये प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा?
1: ये जो प्रोग्राम है 373 ब्रेकन रिज रोड ब्रेकन रिज में 9:30 शुरू किया जाएगा। हम पूजन से शुरू करेंगे। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन भूमि पूजन नहीं है, ये केवल संगठन और मंगलमय वातावरण के लिए है, ताकि हम सब में संगठन रहे और एक शुभ समय हम इस कार्य को शुरू करें और सब हाथों हाथ इसको आगे बढ़ाए।
0: और एक कल ही है पंडित जी ना, रविवार 9 तारीख को।
1: और 9 तारीख को वहां पे होगा। यस, 9th of August।
0: जी, मैंने देखा हूँ, मैं रास्ते से ड्राइव करके गया हूँ, वहां पर जो सड़क था वो बन चुका है लगभग, और पता चल रहा कि यहाँ मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और हो रहा है कुछ पैमाने पर। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा, हमारे श्रोता जो नहीं जानते हैं उनको ये इसका थोड़ा सा विस्तार से बतलाएं, इसका साइज क्या है हॉल और मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी पंडित जी आप दे सकेंगे तो कृपया दीजिए।
1: भैया, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजन के बाद वहां पे जो लोग हैं वो अपडेट देंगे मंदिर का कि हम कहाँ से क्या कहाँ पहुंचे हैं, मंदिर कहाँ पे बनेगा, उसका क्या साइज है, किस तरह से होगा, पिक्चर वगैरह रहेगा, जवाब सवाल का फिर मौका रहेगा, अगर कुछ पूछना कोई चाहता है वहाँ कार्यकर्ता कमेटी रहेगी और उनको भर प्रयास करेगी समझाने के लिए। जो कुछ सवाल होगा लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह होंगे, वीडियो क्लिप्स होंगे, लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वहाँ आकर उनको सब जानकारी मिलेगा और अपने आंखों से जितना पिक्चर है देख सकेंगे। भूमि पे कितना काम किया गया है वो भी देखेंगे, कितना बड़ा जमीन है वो भी देख सकेंगे। ये 30 साल का मेहनत है और आज हम यहाँ पे खड़े।
0: क्या बात है, कमाल की बात है, मेहनत रंग लाई है। और ये जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है पंडित जी, इसका मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? मैंने बोला जो ये मंदिर का इतना विशाल प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, इसका मुख्य भूमिका निर्माण का कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो इसका देखभाल कर रहे करेगा या कर रहा है?
1: देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका निर्माण जिस दिन से मंदिर खरीदा गया, कमेटी के लोग और जनता, उस दिन से आज तक उन्हीं का नाम है, एक का नाम नहीं है। जो अभी के काम कमेटी है वो केवल इस जब से लिए है इस कार को, जहां तक छोड़ा गया, लाया गया था, जहां छोड़ा गया था वहां से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक के नाम नहीं ले सकता हूं, मैं नाम अगर लूंगा जिस दिन से मंदिर बना, जिस दिन से कमेटी आई, आज तक के कमेटी इस कार को आगे बढ़ा रही है।
0: चलो बहुत खूब है पंडित जी। मुझे मालूम है कि जब शुरू में जो नक्शा वगैरह प्लान वगैरह तैयार किया गया था डेवलपमेंट अप्रूवल के लिए, तो उसके बाद में कुछ रद्दोबदल हुआ, क्योंकि वो सड़क आया ना, इजमेंट एक्सेस मिला, तो उसके बाद में रद्दोबदल आई है। तो ये तो वे मैं चाहता था कि लोगों को ये जानकारी मिल जाए छोटा बहुत, कि सभी तरह का अप्रूवल वगैरह आप लोगों के पास है अब, और नया जो ऑल्ट्रेशन किए हैं प्लान के अमेंडमेंट्स वगैरह वो सब पूरा हुआ है।
1: हाँ देखिए, पहले मंदिर तो वही रहेगा, पहले जो रास्ता था पीछे से आ रहा था
0: जी,
1: तो बगल में जो वहाँ पे यूनिट बना हुआ है उन लोगों का डिमांड पर वो रास्ता काउंसिल के पास गए, कहते हैं कि मेरा जमीन ज्यादा छूटा है और इनका कम छूटा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनको भी रास्ता उसी तरह से मिला। वही एक बात था और कुछ नहीं, मंदिर हमारा वही है, जमीन हमारा वही है और सबका भली भांति उसी तरह से हो रहा है।
0: तो पंडित जी, कल जब लोग आएंगे तो कुछ खास तैयारी करके उनको आना है ये पूजा में?
1: भैया हाँ, तैयारी करके आना है, और तैयारी एक है कि हम सब एक साथ संगठन करके हाथों हाथ सहायता करके, और जितना भी हो सके, और अगर कोई छोटा मोटा कहीं चूतिया है उसको भूल कर आगे बढ़ सके और इस मंदिर का निर्माण भली भांति हो सके, ताकि जिस तरह से आज देखे सनातन में हम जाते हैं गौरव पूर्वक, बड़े गौरव से हम जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हम अपने बड़े गौरव से जाएं और देखें कि हम फिजी वासियों ने क्या किया है, आज हमारे लिए क्या है, हमारे भावी संतान के लिए क्या है, और कितना दिन वो मंदिर चलेगा और परमात्मा का नाम लेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग के डेवलपमेंट मिला है इज कंप्लीट, नाउ वी कैन स्टार्ट द टेंपल एंड वी कैन फिनिश, देयर इज नथिंग देयर टू स्टॉप अस।
0: चलो बढ़िया है पंडित जी, अंत में एक एक सवाल, उसके बाद एक और रहेगा आखिरी, लेकिन अभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि इस अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर के निर्माण के विषय में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहे तो किस से वो संपर्क कर सकते हैं?
1: पहले वो जाए हिंदू सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड के साइट पे, वहां सब है, और नहीं तो वो किसी भी कमेटी मेंबर को या मेरे को भी रिंग करके पूछे, या जो प्रेसिडेंट है अनित राम, या वाइस प्रेसिडेंट है राकेश चंद, इनसे पूछे, ये सब आपको समझाएंगे बतलाएंगे। ये वेट कर रहे हैं आपका कॉल, ताकि आपसे बतलाएं कि हम कहाँ पहुंचे, कितना मेहनत किया गया है, किस तरह से मिला है। देखिए ये जो डीए मिला है ये हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट, अब रेस्ट्रिक्शंस बहुत आ रहे हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो हम लकी थे कि हमें मिल चुका है
0: जी। और पंडित जी, जाते जाते कुछ और आप लोगों से कहना चाहते हैं?
1: भैया मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक से एक लोग हैं, आज जैसे रेडियो बिजबानी है, दूसरी आप हैं, और तीसरे हमारे समाज हैं, और हमारे समाज में कई लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं और अपने अपने अपने अपने बल पूर्वक जो उनकी योग्यता है योग्यता के मुताबिक से आकर काम करते हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं बड़े बड़े गौरव से ये कहना चाहता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ आए और आज हम यहाँ पर क्या करते हैं और हमारे हमारे में कितना संगठन है और आज हम क्या करके दिखाए और हम क्या कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आई रिमेम्बर माई पूर्वज एंड आई रिमेम्बर उनके संतान और जिस तरह से उनके जो भावी संतान है उनके जो डिसेंडेंट्स है जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि परमात्मा की दया दृष्टि उन पर सदा बनी रहे। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि वहां पे पूजन के बाद हवन होगा, हवन के बाद लोग जाकर मिट्टी डाल सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे, वहां पे अपडेट मिलेगा। लेकिन भोजन पानी का भी बंदोबस्त किया गया है सबके लिए और मिष्ठान वगैरह भी है। प्लीज कम सी द प्लेस, एंजॉय द प्लेस, एंजॉय योर मील एंड मीट एंड ग्रीट।
0: क्या बात है, बहुत खूब पंडित जी। अच्छा, एक छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए जाते जाते।
1: हाँ भैया, एक तो बड़ा उचित बात है, मैं पहले एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेडियो विजबानी जतीश पूरन और परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सब लोगों के सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम श्रद्धां मेधां यत्प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यं आरोग्यं देहि मे अभिवाहम्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति।
0: धन्यवाद पंडित जी, मैं आपको, आपके पत्नी और जितने आपके परिवार के सदस्य हैं सबको हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप रहते कहाँ हैं, कहाँ से कहाँ जाते हो, हर समय पूजा पाठ वगैरह में, मंदिर के निर्माण में बहुत अपने अपने बहुमूल्य वक्त को परिवार के साथ बिताएं। ये कोई छोटा सा बोझ नहीं, बहुत बड़ा बोझ है सर पर, इसको पूरा करने उतारने के लिए हाथ चाहिए। तो आपने बतला दिया कि कितने लोगों का हाथ है इस सब में। तो एक बार फिर रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से आपको इस समय के लिए और जो जानकारियां आपने प्रदान की हैं अभी करंट इन्फॉर्मेशन लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं पता बतला देता हूं कि हिंदू सोसाइटी ऑफ क्विंसलैंड का जो मंदिर का निर्माण है वो हॉल बन रहा है, वो 373 ब्रेकन रिज रोड ब्रेकन रिज में हो रहा है और कल फाउंडेशन प्रेयर के साथ साथ कुछ दान पुण्य का भी कार्य होगा और ये है रविवार 9 तारीख 9:30 बजे से इसका शुरुआत होगा। पंडित जी जाते जी
1: एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन से मंदिर बना है उस दिन से मैं अटेस्ट हूँ उस टेम्पल का, 1989 से मैं अटेस्ट हूँ टू दिस टेम्पल।
0: जी हाँ, मालूम है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है पंडित जी, सब मालूम है। तो मैं चाहता था कि लोग समझ जाएं कि कितने ज्यादा आप लोग तन मन और धन से आप ये किए हैं और कर रहे हैं, अभी पीछे नहीं हटे हैं। आप चाहते हैं कि एक आलिशान वहां पर बने मंदिर और साथ में कम्युनिटी हॉल इत्यादि। तो चलो, मालिक की बहुत असीम कृपा है, सब कुछ अच्छी तरह से हो, सफलतापूर्वक हो और एक मिसाल आप अपने समाज के वहाँ कायम करें, लोग देख कर बोले हाँ कुछ जरूर यहाँ पर हुआ है। तो विद दोज वर्ड्स थैंक यू सो मच पंडित जी मेरे तरफ से और रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से भी, और एक बार फिर आपको सादर प्रणाम और लोगों की तरफ से नमस्कार,
1: भगवान भला करे।
0: तो मित्रों, ये थे पंडित सनत पांडे जी जो नया मंदिर है वो निर्माण के विषय में जानकारी दे रहे थे। और भूलिएगा नहीं, कल जरूर समय निकालकर, मौसम बहुत प्यारा है, खूबसूरत मौसम मालिक ने दिया है, और आप वहां जाएं परिवार के साथ और भाग लें। इट विल बी अ गुड आउटिंग डे बिकॉज द वेदर इज सो गुड, मालिक कभी कभी बहुत असीम कृपा कर देते हैं। तो यही बात थी बस, और आगे चलते हैं हम। रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम का समय हुआ, 2 मिनट थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और कोई बात नहीं, 2 मिनट ज्यादा करेंगे, 17 मिनट पर खत्म करेंगे। तो चलो पहले विज्ञापन सुनते हैं रानी क्रिएशंस का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम ये नहीं बजाना था, तो चलो हम चलते हैं सही प्ले लिस्ट पर, वहां से बजाते हैं।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
0: और रानी क्रिएशंस आपका हार्दिक स्वागत कर रही है इस प्रोग्राम में, जो कि 15 मिनट का होगा। और कहना चाहते हैं कि भाई, यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े आपको मिलेंगे। शादी कर रहे हैं, पूजा पाठ में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, किसी को दान पुण्य करना है, और उसके साथ साथ अगर नवग्रह का पूजन वगैरह, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अलग अलग रंग के मिलेंगे, आप ले सकते हैं। और बाकी एक्सेसरीज भी आपको मिलेंगी। बाकी फिर से कहूँगा, मैं विस्तार से बतलाऊँगा। तो चलो आगे बढ़ते हुए, प्यारा सा गीत है, इश्क तुम पे, ऐसे गीत के बोल हैं।

0: जय मित्रों, आने लगा है इश्क तुम पे ऐसे। आप सुन रहे थे रानी क्रिएशंस की तरफ से ये बहुत ही लोकप्रिय दो गाना। और आपको कह दूं कि भाई रानी क्रिएशंस में हर प्रकार के कपड़े हर अवसर के लिए हैं यहाँ पर, और साड़ीज का बहुत बड़ा स्टॉक है यहाँ पर। तो रेडीमेड साड़ीज भी जो लोग रेडीमेड पसंद करते हैं पहनने का वो मिलेगा, और जो लोग शायद साड़ीज के प्लीट वगैरह बनाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम प्लीट किस तरह से बनाया जाता है, तो वो रानी क्रिएशंस शॉप से अगर साड़ी खरीदेंगे तो उनका प्लीट खुद बनाकर रानी क्रिएशंस देगी। तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप जो भी है अच्छी तरह से वो फिटिंग हो जाएगा और फिर पहनकर आप निकल सकोगे। तो ये है रानी क्रिएशंस का सर्विस। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो रेडियो पर तो हम नहीं सिंगल करके बतला सकते हैं, लेकिन आप वेबसाइट पे चल दें rani-creations.com पर, और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्या क्या वहाँ पर उपलब्ध है। तो आगे बढ़ेंगे
1: सब्सक्राइब।
0: आगे बढ़ते हुए मित्रों, एक विज्ञापन के बाद हम गीत लेकर आएंगे। और आज शनिवार है, व्हाट्स अ ब्यूटीफुल डे। और दूसरी बात ये भी है कि बुधवार को छुट्टी, आप जानते हैं एक हॉलीडेज है ब्रिस्बेन में, और रानी क्रिएशंस का शॉप खुली रहेगी 10 से लेकर 2 बजे तक, तो आप आकर शॉपिंग कर सकते हैं। अरिजीत सिंह द्वारा अदा किया गया हिमेश रेशमैया जी के संगीत पर तेरा फितूर गीत के बोल हैं।
2: फिर भी प्यार हो जाए आपसे।
3: शट अप।

0: ederim lakin.
1: तो मित्रों, ये बहुत प्यारा सा गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, और आपको याद दिला दें कि रानी क्रिएशंस में हर अवसर के लिए एक्सेसरीज भी है, जैसे ज्वेलरी वगैरह है बहुत सारे, और रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है सर पर है, तो राखी खरीदने के लिए धागे वगैरह रानी क्रिएशंस शॉप में आकर आप खरीद सकते हैं बहुत ही घटाए हुए दामों पर।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: Yeah, opening hours ka samay badla hai. 10 baje subah se khulegi, 4 baje sham tak. Somwar se lekar shaniwar ko, ravivar ko 10 baje se lekar sham ko 3 baje tak. Ab budhwar ko ek public holiday hai Queensland ke liye. जी नहीं, ब्रिस्बेन के लिए, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं 10 से लेकर 2 बजे तक। तो चलें अंतिम गीत इस सेगमेंट का, कुड़ियनी, नीति मोहन और साथियों का अदा किया गीत।
3: गल सुन, दोस्त दे व्याह च आया हुए हैं, काम नहीं करना, जाके एसी ऑन कर।
4: अलेक्सा, स्विच ऑन द एसी इन द लिविंग रूम।
5: ओके, टर्निंग ऑन द एसी इन द लिविंग रूम।
4: टेम्परेचर भी कम कर दूं, हॉट टमाटर माहौल होने वाला है। एलेक्सा, प्ले कुड़ियनी।
5: प्लेइंग कुड़ियनी।
6: कुड़ियनी मेरे दिल विच वस जा, कुड़ियनी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा,

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: जय मित्रों, इसी के साथ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया ही पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए रानी क्रिएशंस की ओर से हैप्पी एका, हैप्पी रक्षाबंधन, और आपका मालिक कल्याण करे। एंड हैप्पी शॉपिंग एट रानी क्रिएशंस, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, उलंगेबा। मिलते हैं, टेक केयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
1: Dear mitron, aur agle shanivar ko 8 se 8:15 ke beech ek aur segment lekar main upasthit ho jaunga. Aur aage badhte hain aapko batla dein ki aaj ka jo lineup hai aise ki is program jo 8:30 baje khatam hoga, उसके बाद निविया जी आ जाएंगी और निविया जी टॉप सेलेक्शंस लेकर आपके लिए उपस्थित हो जाएंगी। फिर हमारा नॉर्मल चलता रहेगा प्रोग्राम, और शाम के समय सुशीला जी आ जाएंगी। कल आप जानते हैं कि रविवार है, धार्मिक प्रोग्राम से प्रोग्राम का शुरुआत होता है। फिर फिरोज खान साहब आएंगे सुबह सुबह, और 7 बजे इस्लामिक प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। 8 बजे से नंद किशोर दास प्रभु जी के साथ आप हो जाएंगे और ये वेद वाणी लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर फिरोज भाई आएंगे, जिन्हें जतीश जी आएंगे 9 बजे से 10 बजे तक। फिर फिरोज भाई आ जाएंगे बीच में, और फिर रोय सिंह साहब 12:30 बजे से आएंगे 2:30 बजे तक, और फिर सुशीला जी उसके बाद। तो ये है हमारा लाइनअप, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप, क्योंकि मैं जब भी कभी जाता हूँ तो बहुत लोग ब्रिजवानी सुनते हैं, बहुत उनसे बातें होती हैं, और हर प्रोग्राम का अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग पेश की है, तो लोग पसंद करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा यही साथ है। तो हम भाई चले हैं साथ, मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, यही बात है। तो ये बातें हैं, तो चलो आगे चलें, मच्छरदानी गीत के बोलने सुना देते हैं।

जी मित्रों, वह था फिल्म जबरिया जोड़ी से गीत जो आप सुन रहे थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए चले, एक खबर फिर एक और गीत।

जी मित्रों, आगे बढ़े हम। अंतिम गीत आज का जो है वो बजाने जा रहे हैं, दिल मेरा ब्लास्ट, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं इसे, और बस थोड़ी देर में प्रोग्राम समाप्ति पर पहुंचेगा।

जी मित्रों, इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत करीब है प्रोग्राम के समाप्ति पर, और अगले शनिवार को एक बार फिर एक और सेगमेंट लेकर हम आपके सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड एंड एन एक्सटेंडेड वन ऑन वेडनेसडे फॉर ब्रिस्बेन सिटी एरिया फॉर एका हॉलीडेज। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आज निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से, क्योंकि वीकेंड आ गया है, मस्ती करने का वक्त आ गया है, झूमने का वक्त आ गया है और सुकून से अपनी जिंदगी के 2 दिन जीने का वक्त आ गया। आप लोग बोलोगे कि सिर्फ 2 दिन, वेल अभी तो 2 दिन ही है, उसके बाद अगले 2 दिन आपको एक पूरा हफ्ता काम करने के बाद मिलेंगे, उस हिसाब से मैं कह रही थी 2 दिन। तो आपने क्या क्या प्लानिंग की है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। जी हाँ, बताइए। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, हम तुम्हें अपनी प्लानिंग क्यों बताएं, मतलब क्यों बताएं, ऐसा क्या तुम हमको देने वाली हो या हमारे लिए करने वाली हो जिसकी वजह से हम तुम्हारे साथ अपनी प्लानिंग शेयर करें। वेल, मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, मैं आपको गाने सुनाने वाली हूं, वो भी ट्रेंडिंग, आई थिंक दैट्स अ फेयर डील। मैं आपको मजेदार प्रोग्राम लेकर आऊंगी आपके लिए और आप मुझे अपनी प्लानिंग बताएंगे, इतना तो बनता है, राइट? जी हाँ दोस्तों, तो अपनी डील आप पूरा करने के बारे में सोचिए, अपनी प्लानिंग मुझे बताइए। और इसी के साथ मैं यहां पर आ गई हूं, तो मतलब टॉप 10 हॉट 10 भी यहां पर आ गया और 10 चुनिंदा गाने भी यहां पर आ गए। अब इवनिंग वाइब की तरह हमारा ये प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं होता है, छोटा सा होता है, बट ये छोटा सा प्रोग्राम उन 10 चुनिंदा गानों के साथ मिलकर बना है जो कि ट्रेंडिंग है, हॉट है, हैपनिंग है और जो हर किसी की जुबान पर है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचाया हुआ है और अब वो आपकी यहां प्लेलिस्ट में भी तहलका मचाने आ गए हैं। तो सबसे पहले 10वें नंबर के गाने से शुरुआत करते हैं। 10वें नंबर का गाना है सारी, जो कि धमाल 4 का गाना है और धमाल 4 कितनी अच्छी मूवी है इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब धमाल 4 कितनी अच्छी है वो आप मुझे बताओगे, लेकिन धमाल सीरीज इन जनरल, जो कि धमाल 1, 2, 3 कितनी अच्छी है उसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और अगर आपने धमाल नहीं देखी है तो फिर मुझे लगता है कि आपने इंडियन सिनेमा को अच्छे से पहचाना ही नहीं। गाना सुनिए और धमाल भी देखिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी।

जी दोस्तों, ऐसे के साथ ये प्रोग्राम की शुरुआत तो हो गई है और मुझे एक ही चीज सुनाई दे रही थी, पैसा पैसा पैसा पैसा, आई मीन मनी, करेंसी। और क्या बात है, मतलब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, खासकर जो एस्ट्रोलॉजर

बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपको ऐसा ज्ञान देते हैं. एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं ये काम करता है. आप अच्छी चीजें बोलते हो तो अच्छी चीजें यूनिवर्स आपको देता है. अगर आप नहीं बोलते हो अच्छी चीजें, गड़बड़ चीजें बोलते हो, तो वो भी यूनिवर्स देता है. तो ऐसे में अच्छी चीजें बोलिए. तो बस वही है कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स हमें सिखाते हैं कि आपको पैसा इमेजिन करना है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमेजिन करनी है कि वो आपके पास अभी है. मैंने भी इमेजिन कर ली एक बुकाटी वेरॉन. जी हाँ, मतलब मैंने बस इमेजिन कर लिया कि मैं बुकाटी से उतर रही हूँ. एंड गेस व्हाट, उस इमेजिनेशन से बाहर मुझसे निकला ही नहीं जा रहा था. मतलब मैंने इतनी कोशिश की और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच तो नहीं ही हो गया. अब वो सच तो नहीं हुआ था, पर मेरे घर वाले मुझे हिला रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ निव्या, व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड. टर्न्स आउट कि मैं बुगाटी वाली इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गई थी. और बुगाटी तो नहीं मिली, लेकिन मेरी मम्मी से धुलाई मेरी होने वाली थी अगर मैं दो बार के बाद उनकी बात फिर से नहीं सुनती तो. या दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. सो अगली बार से अगर आपको कोई स्पिरिचुअल और वेलनेस इन्फ्लुएंसर अगर आपको ये बोले कि यू नो व्हाट, यू नीड टू इमेजिन दिस, यू नीड टू इमेजिन दैट, तो आपको ये जरूर सीखना है. नाउ आज है 8 तारीख, और 8 तारीख का मतलब एक और चीज है जो कि इसी से रिलेटेड है, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट. यहां पर एक गाना सबसे पहले जो कि है 9वें नंबर का गाना, और इसका नाम है वाओ. मैंने देखा है कि पुराने गाने जो अभी इस लिस्ट से बाहर चले गए थे थोड़े दिन पहले, वो फिर से वापसी कर रहे हैं.

दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि कैसे मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर खासकर, आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको अगर कोई भी चीज चाहिए और उसको मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं तो उसको प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कीजिए और वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है और आपको इमेजिन करना है कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी आ गई है, मतलब आप उसी के साथ जी रहे हो। बट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट टुडे थोड़ा ज्यादा, वेल बिकॉज इट्स 8/8। जी हाँ, आज 8 अगस्त है, यानी कि 8 तारीख और 8वां महीना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है लायंस गेट पोर्टल। जी हाँ, नाउ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। एंड ऐसा कहते हैं बहुत सारे मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरुज कि आज का दिन पूरे साल में सबसे बड़ा दिन होता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। मतलब यू जस्ट हैव टू राइट इट, यू जस्ट हैव टू से इट, एंड कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट

0: सकती है, उनके कंप्लीशन के जो है चांसेस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लायंस गेट पोर्टल। जी हाँ, मतलब जिस दिन यूनिवर्स अपने पोर्टल्स खोलता है और जो भी आप चाहते हैं आपको मिलता है, आप बोलोगे कि बस निविया शर्मा आप देखो तुम क्या क्या मैनिफेस्ट करते हैं। वेल, अच्छी चीजें कीजिएगा और अच्छी चीजें बोलिएगा, किसी के साथ झगड़ा मत कीजिएगा आज, क्योंकि या जैसे मैंने आपको कहा कि मैनिफेस्टेशन होती है, जो आप बोलते हो वो मिलता है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो या मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी अच्छी चीजें और फिर मुझे बताइए क्या इसने आपके लिए काम किया या नहीं किया। एंड या आज लायंस गेट पोर्टल, डोंट फॉरगेट दैट। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है 8वें नंबर का गाना।
1: ती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे अनियार शेनिविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ आज वीकेंड है और आई मीन वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, सैटरडे है, तो आई होप आपने कुछ यमी सा टेस्टी सा खा लिया हो. तो अब जरा हम बात कर लेते हैं मूवीज के बारे में. एज सच बॉलीवुड की तरफ से या इंडिया में से कोई बहुत बड़ी मूवी निकल कर नहीं आई है, लेकिन धमाल 4 आप देख सकते हैं, आप अल्फा भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं बेबी डू डाई डू. जो आपने पिछला गाना सुना इश्क मीना 2.0 वर्जन, जिसमें हुमा कुरैशी एकदम खतरनाक अंदाज में नजर आ रही हैं और वो बता रही हैं कि लव इज अ किलर. ऑफ कोर्स, मतलब फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए प्यार बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है और उनका मुकम्मल हो जाता है प्यार, तो मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो जाता है. कुछ लोगों के लिए प्यार बहुत ही खतरनाक चीज हो जाता है. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस. तो यहां पर हुमा कुरैशी जो है वो आपको थ्रिलर सर्व कर रही है खतरनाक सी. जी हाँ, और उसी का गाना था इश्क मीना 2.0 वर्जन. गाना जो है वो पुराना है लेकिन उसको रिक्रिएट किया गया है थोड़े नए मसाले के साथ, थोड़े नए तड़के के साथ. आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा. इसी के साथ आप दो मूवीज और देख सकते हैं और वो है हॉलीवुड की तरफ से, उसमें से एक है द ओडिसी. जी हाँ, द ओडिसी फ्रॉम मैट डेमन, क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी है. ग्रीक माइथोलॉजी के एक चैप्टर पर है. आफ्टर ट्रोजन वॉर, जब ओडिसियस अपने घर वापस जाता है, वो घर वापस जाने वाली जर्नी कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है और उसी पर ये मूवी बनी. आप लोग बोलोगे कि क्रिस्टोफर नोलन का फेवरेट टॉपिक घर वापस जाना ही क्यों है, मतलब उसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है क्या, मतलब कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं वो, इतने टाइम से घर पहुंचते ही नहीं है. इंटरस्टेलर में भी, द मार्शियन में भी, ओडिसी में भी, हर मूवी में वो घर ही वापस जा रहे हैं. वेल, ये तो आपको क्रिस्टोफर नॉलन से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन द ओडिसी देखने के लिए आपको टिकट्स बुक करनी है और जाना है और देखना है. वेल, यू कैन वॉच इट विद योर किड्स, सो ऑफ कोर्स इट्स अ फैमिली मूवी. या इसी के साथ अगला गाना जो कि है विवाह करवा दो जी. मेरा तो नहीं, पर बाकी किसी का अगर किसी को करवाना है तो करवा दीजिए.

देखो, इस गाने का टॉपिक तो डिबेटेबल है जी। हाँ, मैंने जैसे कहा कि किसी को करनी है, किसी को नहीं करनी है, किसी को लड्डू खाना है, किसी को नहीं खाना है, और खासकर मिलेनियल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है इस लड्डू को ना खाने वाली तरफ में, क्योंकि उनको लगता है कि इस लड्डू को खाने में ज्यादा फायदा है नहीं, तो क्यों खाना है भाई, इस लड्डू के बजाय चीज केक खा लेते हैं। मतलब कुंवारी जिंदगी, मजेदार जिंदगी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली फन, अपना कमाना है, अपना खाना है और मजे से जीना है। जी हाँ, ये मैं नहीं, मिलेनियल सोचते हैं। और आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुम्हें कैसे पता, अरे मैं खुद भी तो मिलेनियल हूं, इसीलिए तो मुझे पता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दैट्स व्हाट मिलेनियल थिंक्स, उनके दिमाग में यही चल रहा होता है, उनके ऊपर वाले माले में यही चल रहा होता है। सो अगर आप भी किसी मिलेनियल के पेरेंट हो और वो भी ऐसे कह रहे हैं मेरा ब्याह मत करवाओ जी, तो फिर उसके पीछे यही रीजन है, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता है कि ऐसे ही मजेदार है जिंदगी, इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो किसी के साथ बंध के क्या फायदा। जी हाँ, ये क्या बंधन डालना है, ये बंधन गीला, ओ नहीं, ये बंधन वाला गाना नहीं है एक्चुअली। मैं आपको पता ही है लिरिक्स बहुत कमजोर है मेरे, तो बीच में किसी और गाने की टोन और किसी और गाने के लिरिक्स मैं थोड़े मिक्स कर देती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मेरी फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंची है, फीलिंग्स आप तक पहुंच गई है। अगली मूवी जो मैं आपको बताने वाली थी हॉलीवुड की, वो है स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे। नाउ द ब्रांड न्यू डे जो है वो एक अच्छी मूवी है, लेकिन स्पाइडरमैन सीरीज की पिछली मूवी के मुकाबले थोड़ी सी हल्की है, और ओपनिंग ऑल्दो उसको ज्यादा बड़ी मिल गई है, लेकिन पिछला जो मल्टीवर्स वाला पार्ट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मतलब तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आ गए थे जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीवर्स में रहते हैं, तो पीपल वर लाइक वाओ, यू नो व्हाट, दिस इज इट, एंड दैट वाज द रीजन कि वो बहुत ज्यादा हाइप था, और ये वाले जो पार्ट है स्पाइडरमैन का उसको इतनी बड़ी और जबरदस्त और ह्यूमंगस ओपनिंग मिली। इतनी बड़ी ओपनिंग कि मतलब लिटरली एवेंजर्स द एंड गेम के बाद दुनिया में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बन गई है। सो मैं यही कहूंगी कि मूवी जो है वो अच्छी है, ऑलरेडी अच्छी है, बट पिछली के मुकाबले थोड़ी सी फीकी है, थोड़ी सी। अब आप लोग देखिए और आप लोग मुझे बताइए क्या आप भी यही सोचते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपने इस मूवी को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो गो फॉर इट, लेट मी नो आपको कैसी लगी, एंड इट्स फैमिली मूवी, तो जरूर अपने बच्चों को लेकर जाइए और स्पाइडरमैन की तरह उनको भी सिखाइए कि इस दुनिया में काइंडनेस और हेल्पफुल होना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए जो कि है तू ही दिसदा। जी हाँ, ये है 6वें नंबर का गाना।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजी निविया के साथ। दोस्तों, आगे की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है, मतलब अपनी आधी लिस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और आधी जो है लिस्ट वो बची हुई है, और ये भी बड़े ही मजेदार गानों से भरी है। जी हाँ, तो जग से लैज जो है वो कॉकटेल 2 का अगला गाना है, और ये गाना आपको यही बताता है कि जग से लाज हमें हटानी चाहिए, मिटानी चाहिए, और करके क्या फायदा। जी हाँ, मतलब ऐसा हम कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यू शुड डू इट। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जी हाँ, और किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को आहत नहीं करना है, लेकिन इन रियल सेंस। जी हाँ, अगर किसी की मानसिक स्थिति जो है वो आहत हो रही है बिकॉज यू हैव वोन समथिंग, और आप किसी तरीके से जी रहे हो जो कि आपको बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है लेकिन सामने वाले को नहीं लग रहा है, वैसे में आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पीपल लाइक्स टू डू इट, मतलब हम लोगों को शांति पसंद नहीं है। हम लोगों को लगता है कि सामने वाला मजे से रह रहा है, बट कैसे रह रहा है, ये तो ये पहन रहा है पर कैसे पहन रहा है, या दैट्स व्हाट पीपल थिंक। एंड आपको सबकी कदर करने की कोई जरूरत नहीं है। सो जग से लाज क्या है आपके लिए, उसका पर्सपेक्टिव आप खुद सोचिए, और यहां पर सुनते हैं ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ 2 दिन पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? वो इम्पोर्टेंट चीज थी मून पर हुआ क्रैश, स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट का अपर स्टेज। जी हाँ, और मैंने आपको कहा था कि अभी तक कोई ऑफिशियल जो है वो पिक्चर या वीडियो जो है वो नहीं आई है किसी भी स्पेस एजेंसी की तरफ से, लेकिन पिछले से पिछले कल यानी कि थर्सडे की शाम को या थर्सडे की रात को हम कहें तो एक फोटो जो है वो आती है। और वो किसकी तरफ से आती है? वेल ऑफ कोर्स वो आती है कोरियन स्पेस एजेंसी की तरफ से। मतलब ये तो फाइनल हो गया था कि यहां पर यानी कि मून पर क्रैश तो हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा ही कह रहे हैं, क्रैश व्रैश कुछ हुआ नहीं है, अपनी आप से ही बातें कर रहे हैं, कुछ क्रैश नहीं हुआ है मून पर। सो मून पर बना जो क्रैश के बाद क्रेटर है वो नजर आ रहा है। और क्यों कोरियन स्पेस एजेंसी ने इसे रिले किया है रादर देन नासा या यूरोप स्पेस एजेंसी, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जब क्रैश हुआ यानी कि फाल्कन 9 रॉकेट का अपर स्टेज जब मून पर क्रैश हुआ, हमने उसकी टाइमिंग भी ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर ली थी, सब कुछ सही था, लेकिन उस वक्त मून की कौन सी तरफ वो क्रैश होना था ये किसी को भी नहीं पता था। मतलब मून की एक लाइट साइड है और एक डार्कर साइड है। अब वो डार्कर साइड पे अगर गिरता तो किसी को पता चलता ही नहीं, लेकिन वो इन दोनों के बीच की तरफ गिरा और उस वक्त वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोरियन स्पेस एजेंसी का एक एक ऑर्बिटर घूम रहा था। एंड गेस व्हाट, उसी ने उस चीज को अपने अंदर कैद किया और फिर जो है कोरियन स्पेस एजेंसी ने उसे अच्छे से एनालाइज किया और थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद फोटो को रिलीज किया। सो अगर आप लोग देखना चाहते हो आप देख सकते हो, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने अच्छे से हमें कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें बिफोर और आफ्टर की फोटोज जो है वो दोनों में दी हुई है। सो क्रेटर जो है वो नजर आ रहा है। और कोरियन स्पेस एजेंसी ने एक और चीज कही है कि उनके ऑर्बिटर ने जो पिक्चर्स भेजी उनको एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि जो डस्ट इम्पैक्ट था उसमें किसी चीज के रिलीज होने की बात थी। मतलब एक पर्टिकुलर सा चीज यानी कि एक पदार्थ जो उस डस्ट में निकला था वो एग्जैक्टली नहीं वहां पर निकलना चाहिए था। वो एग्जैक्टली क्या था हमें नहीं पता और अभी तक कोरियन स्पेस एजेंसी उसके बारे में खुद भी खोजबीन करने की कोशिश कर रही है। बट या डस्ट इम्पैक्ट वॉज नॉट नॉर्मल। जब वो क्रेटर बना, जब वो गिरा, जब वो क्रैश हुआ तो उसके बाद जो डस्ट उड़ी उसमें कुछ चीज रिलीज हुई। We don't know what exactly was that, but the thing is कि कुछ तो था। So yeah, आप भी देख सकते हैं और आप लोग बोलोगे कि ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे कि अभी एक एक महीने का बच्चा होता है ना माँ के पेट में, पता नहीं चल रहा होता है उसका सर कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, मतलब of course कुछ बना ही नहीं होता exactly। वैसे सी फीलिंग आपको आएगी उस क्रेटर को देखकर, because exactly बहुत अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा जरूर दिख रहा है। सो या यू नो, गो फॉर इट, देखिए और फिर मुझे बताइए क्या आप निराश हुए क्योंकि आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। जस्ट लाइक मी, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं भी तेरे तेरे उत्ते मर्दा नहीं, मतलब वेलकम थ्री यानी कि वेलकम टू द जंगल का ये गाना है। और इसी के साथ यहाँ पर एंड में बड़े ही अच्छे से अक्षय कुमार ये भी बोलते हैं, वी मिस यू कैटरीना, क्योंकि इसमें उनके साथ दिशा पाटनी है। नाउ वेलकम टू द जंगल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, क्योंकि इसमें इतने सारे एक्टर्स हैं, आपको लगेगा सारा का सारा बॉलीवुड इधर ही तो आ गया है, मतलब इधर ही है सारा बॉलीवुड, कहीं और नहीं है, कोई और पिक्चर में नहीं है, इधर ही है सारा बॉलीवुड। बट फन मूवी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगला गाना जो है वो मैसेकर है, और अल्फा का ये गाना है, मतलब बॉबी देओल, अनिल कपूर, साथ में आलिया भट्ट और शर्वरी बाग, मतलब आलिया भट्ट और शर्वरी बाग इसे लीड कर रही एंड हाउ, जी हाँ, द वुमन इज लीडिंग एंड हाउ, जी हाँ, मतलब क्या बात है, क्या बात है, राइट। सो यहाँ पर मैसेकर जो है वो अल्फा मूवी का गाना है, और सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब हम अपने प्रोग्राम के एंड के पास पहुंच गए, मतलब अब जो है प्रोग्राम खत्म ही होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी सीरीज के बारे में जो कि इतनी ज्यादा हिट हो गई है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। ऑल्दो ये आपको सेंटी करेगी, आपको प्यार में फील करवाएगी, आपको इमोशनल फील करवाएगी, बेसिकली बहुत सारे इमोशंस आप फील करने वाले हो और बीच में आपको ऐसे लगेगा वाई, मतलब आपको ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। बट देन प्यार आपको ऐसा ही तो फील करवाता है, ऐसे इमोशंस जो कि रोलर कोस्टर राइड से भी ज्यादा खतरनाक और इधर उधर कोनों में आपको लेकर जाए। सो ऐसा ही कुछ है मुसाफिर कैफे, लेकिन सबने इसे देख लिया। आप लोग बोलोगे कि स्टोरी ऐसी होती तो अच्छा होता। वेल, स्टोरी ऐसी होती तो अच्छा होता, लेकिन यहां पर ऑलरेडी एक स्टोरी है। जी हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे की बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है ये 8 एपिसोड का शो, जिसका पहला सीजन आ चुका है। और ये स्टोरी जो है वो है चंदर के बारे में, जो कि लिटरली इंटेंस और अनफॉरगेटेबल स्पार्क जो है वो फील करता है सुधा के साथ। और फिर उसके बाद कुछ सालों बाद वो रन कर रहा होता है पहाड़ों के ऊपर एक खूबसूरत सा कैफे, एंड दैट्स व्हाई मुसाफिर कैफे। जी हाँ, अगेन ये आपको फील करवाएगी बहुत सारी फीलिंग्स। और जैसे मैंने कहा कि ये रोमांटिक या रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलने वाली है। सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। बट सिंस एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो योर थॉट्स। जी हाँ, और इसी के साथ आपके लिए गाना मस्कारा, और ये है मैं वापस आऊंगा मूवी का।

जी दोस्तों, और इसके साथ मस्कारा तो हमने अपनी आंखों में लगा लिया है। इन केस इफ यू डोंट नो व्हाट मस्कारा इज, मस्कारा जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज होती है जो कि हम अपनी आईलैशेस पे लगाते हैं और अपनी आईलैशेस को इनहांस करते हैं। जी हाँ, इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, खासकर मेरे मेल लिसनर्स को, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी महिला मित्र, अपनी लाइफ पार्टनर या अपनी मॉम को ये गिफ्ट जरूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मतलब मस्कारा सुन के आपने मस्कारा गिफ्ट नहीं किया तो क्या फायदा। और मेरी जो फीमेल लिसनर्स हैं, ये मस्कारा गाना अपने हस्बैंड्स को भेज दीजिए, या अपने बॉयफ्रेंड्स को भेज दीजिए, अपने पार्टनर्स को भेज दीजिए, ताकि वो मस्कारा आपके लिए ले आए। क्योंकि खुद मस्कारा लगा के, खरीद के लगाना, वो बात नहीं बनेगी, राइट। इसी के साथ नंबर वन सॉन्ग के ऊपर पहुंच गए हैं हम, जो कि है माशुका। और ये गाना कितना जबरदस्त है, कितना टेम्पटिंग है, क्या फील कराता है, मतलब सेक्सी फील करवाता है। और ये मैं नहीं, ये लेडीज ने कहा है, बहुत सारी लेडीज ने, कि ये गाना आपको ऐसा फील करवाता है कि जस्ट वेयर अ सेक्सी ड्रेस, अ क्लासी ड्रेस, डू सालसा विद योर पार्टनर, एंड यू नो व्हाट, अच्छे से मेमोरीज क्रिएट करो। क्योंकि बॉलीवुड हर दिन, रोज हमें कोई नया सालसा जो है वो सॉन्ग नहीं देता है। इट्स बीन अ वाइल कि कोई अच्छा सा सालसा सॉन्ग बॉलीवुड ने हमें दिया हो, लेकिन माशुका ने वो सारी की सारी कमियां पूरी कर दी हैं। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब आपसे मिलना होगा मंडे को। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तब तक ही हेल्दी रहना है क्या, मतलब हमेशा हेल्दी नहीं रहना क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि हेल्दी आप रोज रहिए, और हंसते खिलखिलाते भी आप रोज रहिए, और मुझे याद भी आप रोज ही करते रहिए, और मजे से अपनी जिंदगी को जीते रहिए। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। और ये रहा आपका ये गाना, नंबर वन सॉन्ग माशुका फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टॉप 10 हॉट 10 इस हफ्ते की। बाय बाय, सी यू, टाटा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत भजित। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: साडे आए असी भुले ना समाए साडे घर ते शरीफ ले आया नू साडे सारे वलों जी
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
6: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
5: Acha? Wo kya?
6: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
5: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
6: Are, receivers ab cash pickup, bank transfer ya mobile wallet mein bhi le sakte hain money.
7: Download kijiye Lotus Foreign Exchange online au.lotusfx.com app aaj hi visit karein.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।